إخوانهم أو عشيرتهم

0: और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है। मोमिनों, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो ये अल्लाह के हुक्म से था और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और ऐ मुसलमानों, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
1: وَلِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ

مصدعا من خشية الله وتلك الأمثال.

और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोजख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: त कार तां हथिया बंदनि जो घर ते हमिलो औरत ॿिन पुटनि ऐं धीउ समेत क़तल ॿजणा ज़ख़्मी मगलनि में औरत ज़रीना ख़ातून संदसि पुटु ज़मीर रोशन मोगेरी ऐं साइमा मोगेरी शामिल बंद अली ऐं टिनि जी डींगरी कजली ज़ख़्मी मकतूलनि जा ॿारहं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल पुलिस मुजिबि वाकियो पुराणे तकरार तां पेश आयो आहे मकतूल ते बिरादरी जे हिकु ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो साबे जो बखराणी बिरादरी जी बिंदुरनि में कार ऐं करार तां छेड़ो फायरिंग में ॿ ॼणा मारिजी विया औरत ज़ख़्मी मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस पहुची दिन में फायरिंग बंदि कराए ॿई लाश तहवील में वठी ज़ख़्मी औरत खे इलाज लाइ शिकारपुर सिविल इस्पताल मुंतक़िल कयो घोटकीअ वेझो ॻोठ लीमा घोटो भरिसां फायरिंग ॻोठाणो नादिर अली सुंदराणी क़तल मक़तूल जे वारसनि जो घोटा धुर ते ॻोठाणे खे मारण जो इल्ज़ाम जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस मुजिबि कुझु माण्हुनि खे शक जे बुनियाद ते हिरासत में वरितो आहे वधीक जांच जारी आहे फैज़गंज ऐं पर पासे में गैस्ट्रो वबाई शिकिल इख़्तियार करण लॻी टीह खां वधीक मर्द ऐं औरतूं ॿार गैस्ट्रो में मुबतला केतिरनि जी हालत गणतीअ जो की थुलभर सां गुलशेर में कर्नाणी बिरादरी जी बिंदुरनि में पैसनि जी देती लेती तां छेड़ो अठ ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-768
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। यू आर शुरू कर चुकी है रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सी दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RG रुखसार, सिंध की आवाज। हरियो कैसे हैं आप? आई होप जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हूँ, बिल्कुल टिप टॉप सेट, कूल एक साउंड, गम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरे पूरे 1 बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, खूबसूरती वाला खूबसूरत साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी 1 बजे तक। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है 11:16 जो कि पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसपे भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हाउ सेफ सेफ जिन, बट नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। सफल जी खुदा खैरियत दे मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत दे, मतलब वो लोग जो लोग यहाँ सालगिरह हैं उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, और जो लोग हैं बीमार उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं उनको जाएंगे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे हमेशा हमेशा की तरह, या पहले कभी हुए नहीं है तो इस बार हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वालियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पर सारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगिली, जी आया नू, सद बिस्मिल्लाह, बोंजोर साओ, नी हाओ, एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सारी बातें करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ चलेंगे आगे और आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

मैसेजिंग प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKI टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि होगा, मुझे नहीं पता कि अभी तक हमारी जो पोस्ट है वो लाइव गई है पेज के ऊपर या नहीं. सो अगर मुझे पता चलता है कि लाइव चली जाती है तो आपको मैं पेज भी बता देती हूँ. और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. एक नहीं, दो नहीं, मेरे ख्याल से 2 से 3 सेगमेंट्स में जो कि होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. और वो जो सेगमेंट्स होंगे ना, वो होंगे सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट होगा अब से ठीक ठीक ब्रेक के बाद, दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ. सुर लगाओ गाना सुनाओ में होगा ये कि जो लोग कॉल पे आएंगे वो गाना सुनाएंगे और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. ठीक है जी, तो ये होगा. और मेक श्योर कि जो कॉलर आए और वो गाना जो सुनाए ना, वो रोने धोने वाला या सैड सॉन्ग नहीं होना चाहिए. और गाना इतना गाना चाहिए कि आपके गाने के बाद वो गाना चल भी सके. ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा गाना सुनाने बैठ जाए मुझे. ठीक है, पूरा गाना तो मैं वैसे भी प्रोग्राम में नहीं चलाती वो मैं आपसे कैसे सुनूंगी. ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ख्याल से गाना सुनाइएगा. अच्छा, इसके अलावा जो हमारा सेगमेंट होता है 12 बजे के बाद वाला, डैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर जो कि आप लोग बोल सकते हैं. और जब आप लोग बोलेंगे ना टंग ट्विस्टर, तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा उस सेगमेंट को. और जब वो विन कर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा बोलता है. ठीक है जी, तो ये होगा. और एक और गाना प्ले कर चुकी हूँ आसम अजहर की आवाज में. इस गाने को सुनते सुनते हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एच ब्यूटी क्रीम साइफ्री ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज।
1: तंगे जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मुरली

0: ओके, आजकल वैसे अपोजिट चल रहा है यहाँ पे, मतलब फीमेल की लाइन होनी चाहिए थी क्या, तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगी। खैर नेक्स्ट कॉलर लेंगे, ये थोड़ा सा गाना सुन ले, कॉलर को वेट नहीं करा दे, कॉलर लेते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: सरदर्द बात कर रही
0: हूँ। सरदर्द बात कर रही है, सरदर्द माइक सही करवा लिया फोन का? बड़ी खुली खुली आवाज आ रही है आज तो, खिली खिली खुली खुली खिली खिली। अच्छा सरदर्द वाकई सही करवाया या खुद ही सही हो गया, एक बार और फेंका है तो वो दोबारा सही हो गया?
1: नहीं नहीं,
0: ऐसा होता है ना कि जब हमारा घर में टीवी का जो है रिमोट नहीं चल रहा होता, हम उसको मार मार के चलाते हैं, और मार मार के मतलब मारने के बाद ना वो पहले से ज्यादा सही चल रहा होता है।
1: हाँ,
0: है ना। बस ये जुगाड़ जुगाड़ है पाकिस्तानी आवाम के। खैर आप मुझे बताएं, गाना सुनाएंगी कोई?
1: सुना
0: दूं,
1: गाना ही ना
0: बिगाड़ूं,
1: कोशिश
0: करूंगी
1: लगा के सुना
0: दूं। ओके, पहले मुझे बता दे कौन सा गाना है।
1: दिल लेके।
0: दिल लेके ओएसटी है कोई?
1: नहीं ओएसटी नहीं।
0: अच्छा दिल लेके किस सिंगर का है ये?
1: नबील चौकर।
0: चलो ठीक है,
1: सुना दूं?
0: हाँ जी सुना दे प्लीज।
1: दिल लेके
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ कहना है सरदर्द, किसी को डेडिकेट करना है?
1: थैंक
0: यू। ओके जी थैंक यू। ये रहा गाना।

0: जीए सखर एफएम 88
1: सखर की आवाज ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: लास्ट लकी कॉलर्स भी लाइन पे लेना शुरू करते हैं जी और चेक करते हैं लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे कहाँ से। हेलो
1: बाजी रुखसार, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं भाई?
1: बाजी अजीज सोलंकी जलाए
0: जो अजीज सोलंकी भाई, इतनी देर बाद कॉल कर रहे हैं, कैसे ठीक ठाक?
1: बस
0: ओके, मुझे बताएं लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: भाजी सुखी गाल इया है तमाम उपेशी जे करे निमा मुस्तिया बंदी करे पंज वक्त दरबार जी पाबंदी करे दरबार सारा काम करती रहे।
0: चले जी जबरदस्त, थैंक यू। कुछ और कहना चाहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ एक और सॉन्ग प्ले करेंगे और एक और कॉलर भी लेंगे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: एजाज अली।
0: एजाज अली कैसे ठीक ठाक? प्रोग्राम सुनते हैं
2: जी? बिल्कुल,
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: रोजाना सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
0: कॉल पहली दफा कर रहे हैं?
2: जी जी, कॉल पहली दफा कर रहे हैं।
0: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि या टंग ट्विस्टर नहीं, सॉरी, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात क्या है?
2: मौसम पर अच्छा है, हवा चल रही है।
0: मौसम अच्छा है, हवा चल रही है कहाँ पे?
2: जी जी,
0: सखर में हवा चल रही है।
2: सखर बेराज
0: पे हवा चल रही है। ओके जबरदस्त, मौसम अच्छा है। चले जबरदस्त। जी जी जी जी बिल्कुल।
2: अब्दुल करीम महेश्वर, असलम अल्ताफ साहब।
0: ओके
2: मरो मिलता हम।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।

सिंध जी नए माली साल 2026-27 जी बजट जा थी वही 12 जून ते सिंध असेंबली में पेश करियम कान नए माली साल में गुजरियल माली साल वाली तरक्याती बजट रखने की तजवीज सूबाई ADB बजट 520 अरब ए जिले तरक्याती बजट 55 अरब रुपया रखने की तजवीज तैयार स्कूल एजुकेशन खाते की तरक्याती बजट 17 अरब 82 करोड़ कॉलेज एजुकेशन खाते की 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखने की तजवीज लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज खाते के लिए 2 अरब 64 करोड़ बल्दियात के लिए 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखने की तजवीज तैयार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते की 24 अरब 66 करोड़ रुपया तरक्याती बजट रखने की तजवीज तैयार कई

सिंध में बदमनी की बाह वधीक ॾह इंसानी जानू विकाए वही लाड़काणो भरसा औरत बिन पुट ने धीर समेत कतल मियाँ साहब वेझ कार तकरार बिन जन जो हयातियों गिड़काए वो घोटके भरसां पे गोठाणो गोलियन जो खाद बणजी वियो लाड़काणो जे माउटा थाने जे हथ में मुगेरी बिरादरी जी बिंदरनि में पुराणे तकरार तां हथियार बंदनि जो घर ते हमिलो औरत ज़रीना खातून संदस पुट ज़मीर रोशन ऐं धीउ साइमा मुगेरी कतल वजा ज़ख़्मी पुलिस मूजिबि मक़तूल धुते बिरादरी जे हिकु ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो लाड़काणो में ही अलाहाबाद थाने जे दमे पसंद जो पानो कंदड़ जोड़ो कतुल हथियारबंद औरत फिरदोस ऐं संदस मुड़ुस जावेद कोटाणी खे कतुल करे फरार थी विया मियाँ साहब जो बखराणी बिरादरी जी बिंदुरनि में कारह तकरार सां झेड़ो बजणा कतुल औरत ज़ख़्मी मक़तूलनि में अब्दुल जबार ऐं आगा असदुल्ला बखराणी शामिल औरत मारवी ज़ख़्मी थी पई घोटके वेझो गोठाणो नादिर सुंदराणी हथियारबंदनि तां कतुल मक़तूल जे वारसनि जो घोटा धुर ते गोठाणे खे मारण जो इल्ज़ाम कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस पारां कुझु माण्हुनि खे हिरासत में वठण जी दावा ईरान हकीकत में मुआदो करणु चाहे थो जेको अमेरिका ऐं असां सां गॾु रहंदड़नि जे लाइ सुठो साबित थींदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त मुख़ालिफ़ सुकून सां वेहनि ऐं पंहिंजो कमु कनि आख़िर में सभु कुझु सुठो ई थींदो ईरान कॾहिं वेट में हथियार न ठाहे सघंदो

0: हक बख्शा
1: रो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती का जिम्मा उठा लिया है भाई। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं, हमेशा के लिए हसीन बनना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जनाब, क्यों आप इस्तेमाल करेंगे, किस लिए करेंगे, कैसे करेंगे, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो आपका हमारा साथ प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरी 3 बजे तक। हाँ जी भाई, बहुत सारी वाली बातें करेंगे लेकिन साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रोवाइजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से जरा रेडी शेडी हो जाइए ब्यूटीफुल बनने के लिए, खूबसूरती के राज जाने के लिए और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप हमें जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारे साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम इस प्यारे से खूबसूरत से प्रोग्राम, एक बहुत प्यारे खूबसूरत से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलाम हमारे लिस्ट में मौजूद है, तो हम जरा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

जी जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप बहुत ही प्यारे सा प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। आगे सिद्धरा आप लोगों के साथ साथ मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। जनाब अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आप शामिल प्रोग्राम हो जाया करें, हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में सर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। ओके जनाब, तो सवाल की बात की जाए तो आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से सवाल पूछूं कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने किसी की झूठी तारीफ करी है। वैसे तो कई मरतबा ऐसा हो जाता है हमसे अगर कोई भी पूछता है कि मैं कैसे लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं तो हम बदले में उसका दिल रखने के लिए कह देते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि हम अगले इंसान की झूठी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने वाकई किसी इंसान की झूठी तारीफ करी है या फिर नहीं, या आप रोज ही करते हाँ जी, किसी का दिल दुखाना भी एक बुरी बात होती है। जब हम ये बात सोचते हैं तो हम झूठ बोल देते हैं अगले इंसान का दिल रखने के लिए। चलें, ये बात वैसे सही है गलत ये तो इसके ऊपर आगे जाकर बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने किसी की झूठी तारीफ करी है, और करी है तो क्यों करी है ये भी बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। और अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा फेसबुक पर पेज मिल जाता है और पेज को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो है ना, आप पेज को जैसे ही ऑन करते हैं तो वहां पर आपको हमारी प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ साथ आप मुझे बताइए कि क्या कभी आपने किसी की झूठी तारीफ करी है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आ जाइए प्रोग्राम में, और प्रोग्राम आप लोगों का है जनाब, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अगर हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद है। हाँ जी, ये जो व्हाइट एज वालों के प्रोडक्ट्स है ना, ये बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, हर इंसान को देकर, हर इंसान की जरूरत को देकर ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो तैयार किए गए हैं। ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि भाई ये प्रोडक्ट तो हम लगा ही नहीं सकते, मेरे मर्जी वाला प्रोडक्ट तो इनमें शामिल है। सारे लोगों के मर्जी के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोगों को ब्यूटी क्रीम मिल रही है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल मिल रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंसान की जरूरत वाले, बेसिक जरूरत वाली सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे पूरे प्रोग्राम में कि आप क्या तरीकेकार जो है वो फॉलो करके आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जी हमें ज्वाइन करते जाइए और बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे और बताएंगे कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तभी तो बातें जो हैं वो करने में मजा आएगा। तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? लिखते हैं कि उसे कहना जहाँ हमने बिछड़ते वक्त लिखा था कोई रुत हो कोई मौसम मोहब्बत मर नहीं सकती, वहाँ पर लिख गया कोई ताल्लुक ख्वाह कैसा हो बिल आखिर टूट जाता है, तबीयत भर ही जाती है कोई माने ना माने पर मोहब्बत मर ही जाती है। वाह वाह वाह वाह, हजार खान जो तो ये हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हजार भाव, खुश आयो, ठीक आयो। और अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, अयाज अली खास के लिए भाई तवाज मोहब्बत हूँ तवाज ने प्रोग्राम बुध पाया। हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दें तुम्हें, कोई बताए उन्हें जाकर के जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बात है, आज आपने इतनी दुखी वाली शायरी शेयर कर दी, खैर तो है ना हिदायतुल्लाह।
अच्छा ये किशोर भाई भी हमारे साथ मौजूद, कहते हेलो हाय अदा कैसा है तू, मां सफा मस्त दामदा की आयो ब्रो, और कहते हैं स्मार्ट हाजिर आहे आपके होंठों पर 460 वोल्ट की स्माइल लाने के लिए। चलें ये भी अच्छी बात है, वैसे ये वोल्टेज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा लेकिन चलें कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जमान, कैसे हैं ठीक ठाक मजे में, दर्दे दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं मेरी स्वीटी आप कैसी हैं। और उदास लड़की क्या कहते हैं, हेलो हाय ओपर जानी वेलकम टू शो एंड वेलकम मी एंड आई याद यू वेरी मच, आई याद यू टू, वैसे कहाँ थी तुम निनी चोकरी। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती वो अपने पैसे मुझे दे दे, मुझे तुर्की जाना है वैसे ये तो मैं भी कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई पैसों से सुकून नहीं होता, पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती, भाई आप अपने सारे पैसे हमें दे दें ठीक है, हम बड़े खुश होंगे और पैसों से वाकई खुशियाँ खरीदी जा सकती है और पैसों से वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीदे जा सकते हैं। तो जब इंसान जो है ना वो खूबसूरत होगा, खूबसूरतियां मिलेंगी तो इंसान खुशी हो जाएगा। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। नाम लेने की सूरत में जो है ना वो नंबर बताया जाएगा आपको प्रोग्राम के अंदर, उसके ऊपर रब्ता जरूर कीजिएगा। और इसके साथ से टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी, मजे करेंगे जी, गाने सुनेंगे अच्छे अच्छे वाले। आप बस हमारे साथ मौजूद रहिए, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: एक और संगे मील।
2: तंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

अगर आपके चेहरे पर रेड आपकी स्किन बन जाती है, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि अगर आप धूप में जाते हैं या फिर वैसे ही अगर आपकी जैसे गर्मी बढ़ती है तो आपके चेहरे की स्किन रेड हो जाती है, तो आप डॉक्टर पिंपल का जो ये ट्यूब है ना, ये आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपकी जो नाइट क्रीम है ना, वो आपकी स्किन को गोरा भी कर देगी और आपके चेहरे पर ये जो असर आता है ना, ऐसा कि भाई आपके चेहरे की स्किन रेड हो जाती है, लाल पड़ जाती है, एक्नी आ जाते हैं, एक्नी के मार्क्स नहीं जा रहे हैं, तो वो डॉक्टर पिंपल जो है ना वो अपना काम करेगा और इन तमाम तर चीज़ों को आपकी स्किन से जो ना वो दूर कर देगा। इसी के साथ साथ अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, अच्छी सी फेयरनेस क्रीम की तलाश में है, तो वाइट एज की लवली क्रीम भी आपके पास मौजूद है मेरी जान। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी क्रीम हमारे पास मौजूद हो जो कि आप दिन में लगा सकें, अगर आप मेकअप नहीं लगा पाते हैं, अगर आप फेयरनेस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, तो आप वाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार की गई है। इसके अंदर 30 विटामिन कैप्सूलेट किए गए हैं और जी उसके अलावा सिर्फ बात जो है ना वो यहाँ तक नहीं रुकती। 30 विटामिन के कैप्सूल के साथ साथ इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी एड की गई है, तो बहुत ही मजेदार ये एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिसके अंदर विटामिन B3 है, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन D है, ऐसे बहुत सारे विटामिन के कैप्सूल हैं जो कि रोजाना अगर आप सुबह हो या रात हो इस्तेमाल करते हैं मुनासिब मकदार में, तो आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, गोरी हो जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो निशानात हो वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग लेडी हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि आपको जाना पड़ता है सुबह सुबह तैयार होकर, तो बस आप वाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर लगा लें, फिर देखें सारा दिन आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश रहती है, ग्लोइंग रहती है और प्यारी प्यारी रहती है। अगर आप अपने किसी भी जो है ना डेली लाइफ के अंदर कोई अच्छा सा सोप ऐड करना चाहते हैं, तो वाइट एज का ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है, या फिर कोई अच्छा सा फेस वॉश ऐड करना चाहते हैं, तो वाइट एज का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत करने वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। तो लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए और खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और साथ साथ डायल करते जाइए 0315 799 0595। ओके जनाब, जल्दी से ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया प्रोग्राम के अंदर कि आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी किसी की झूठी तारीफ करी है। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये होता है कि भाई अगर हम किसी की झूठी तारीफ करेंगे तो अगला इंसान खुश हो जाएगा, वैसे किसी का दिल तोड़ना भी बुरी बात होती है, तो इसी वजह से भी हम शायद झूठ बोल लेते हैं। तो आप मुझे आज बताइए कि क्या आपने कभी किसी की झूठी तारीफ करी है दिल रखने के लिए। बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं। फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए।

ब्यूटी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और ज्यादा हसीन होते जा रहे हैं. किशोर भाई कहते हैं कि सिस मैंने आज गौर किया इस पिंक कलर वाली लड़की को, पिंक ड्रेस वाली लड़की को, वो पहले दिल दे रही है फिर हाथ से दो टुकड़े भी कर रही है ना. वो इसलिए ताकि आप पहले से जरा जो करने रहे कि दिल जब आप लगाएंगे तो टूट भी सकता है. तो जरा ध्यान से. हजार खान जतोई भाई आपका बहुत शुक्रिया. एहसन अली अरबानी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं एहसन? हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक मुझे लोगों का तो पता नहीं लेकिन सिद्रा तुम्हारी तारीफ करता हूँ. अब पता नहीं सच्ची है या झूठी. क्या मतलब, इतना भी नहीं पता. अच्छा नजीर कोसो में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम करते हैं भाई का. हजार भाई कहते हैं टॉपिक हाँ की है झूठी तारीफ, कभी कभी करनी पड़ती है झूठी तारीफ. अदी ये सही बात है, कभी कभी वाकई करनी पड़ जाती है. और हजार भाई कहते हैं कि सब इल्म है, साकू इल्म है, दुनिया फिल्म है. आहो जी साकू भी ये इल्म है. अच्छा सनौला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक ठाक है? वास भाई कहते हैं अदी से दो जवाब कदे भी कैंची कूड़ी तारीफ ना ही गई. चलो ठीक है. अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और हैं जी आदिल कहते हैं कि तारीफ सिर्फ हम अच्छा मेरी करते हैं, झूठी भी नहीं करते, सच्ची मुच्ची वाली तारीफ करते हैं. क्या बात है. अली अकबर ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है सकरेंट से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया.

लीजिए फलक शबीर की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय करिए और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। मोहम्मद हाशिम हमें सुन रहे हैं सोहबतपुर बलोचिस्तान से और रिहान अली हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम रिहान। अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुर्दों को कंधा देने को सवाब समझने वाले लोग जिंदा लोगों को सहारा देना गुनाह समझते हैं। एग्जैक्टली मुख्य करी करी लगना ऐसा सिस्टम थोड़ा उबित हुआ है रखा है करी भी चाहता सको और उसके अलावा बुजुर्गों का साया आ चुका है भाई आ चुका है बुजुर्ग।

मानोला टग्गड़ भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। दर्दे दिल कहती है कि नहीं सिद्रा, मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, बस तुम्हारी तारीफ करती हूँ, और वो तारीफ झूठी तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। चले मान लेते हैं। चले नया गाना भी सुन लेते, अच्छा लगा तो कल लगा देंगे। किशोर भाई कहते हैं, टॉपिक, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो शख्स खुद महसूस करता है कि हाँ ये सच्ची तारीफ है या फिर झूठी। ये तो है वैसे, कई मरतबा हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, अगला इंसान खुद ही ये जरा कंफ्यूज हो जाता है कि इसने तारीफ करी या फिर समझ गए होंगे।

बात है जनाब, वाइट इज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, आप क्या समझे थे? अच्छा डायल कीजिए 03-15-799-0595. अच्छा मकसूद मना हमें सुन रही है, मेहरापुर से कहते हैं नमस्कार। अच्छा शो की तारीफ करें, मतलब ये लग रहा है मुझे बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम, हाँ जी, मतलब अच्छा है, अलग ही दुनिया में आप गुम हो जाते हैं जब आप मेरा शो सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा फहद डेरी, सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह, वालेकुम अस्सलाम, अदा छाले तो खुश आयो। ये है जी सलाम बाजी जुल्कनेन सनाफ जुल्फकार अली खोड़ो फ्रॉम अखिल बाजी, फोटो जरदारी का सॉन्ग तो सुनाएं, क्या बात है जी जुल्कनेन, आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, आप हमें अखिल से सुन रहे हैं। फरमाइश लगाने की फुल वाली कोशिश करेंगे, थैंक यू। यासीन गुडाड़ू हमारे साथ हैं सकरण से, अल्लाह जो शुक्र है सदरा हमा बुधायो की आयो, मजबूरी में करनी थी पवे तारीफ, सनम आरवी जो सॉन्ग बुधरायो डेडिकेट बशीर लेगारी। मन मजबूरी तमाची मथा भी अच्छी वेंदी है, चलो खैर है। और ये माजूद वालेकुम अस्सलाम बाजी सदरा, क्या हाल है आपकी, आपका शुभरी नाई से मिर्पुर खास का उम्मीद अली लाशारी, सलाम तुम्हारे नाम चाचा खाली जुड़े जो अदील अबड़ो चोवन कुमार कुर्बान खास के लिए अजीज सोलंगी एंड शमन का गाना सुना।

0: आती है और साथ साथ न्यूज ब्रेक भी आ रही है। यहाँ पर न्यूज ब्रेक आ चुका है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास करते हैं। आप जरा बैठे रहिएगा, आप हमारे साथ साथ मौजूद रहिए, पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते जाइए।
1: मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से,
2: तो डालो धमाल और बोलो
1: GAFM 88
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सिंध जी आने वाली साल 2026-27 जी बजट क्या थी वही 12 जून सिंध असेंबली में पेश करो जमकान। नए वाली साल में गुजर वाली साल वाली तरक्याती बजट रखने की तजवीज़, सूबाई ADP बजट 520 अरब है, जिले तरक्याती बजट 55 अरब रुपया रखने की तजवीज़ तैयार। स्कूल एजुकेशन खाते की तरक्याती बजट 17 अरब 82 करोड़, कॉलेज एजुकेशन खाते की 17 अरब 10 करोड़ रुपया रखने की तजवीज़। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज खाते के लिए 12 अरब 64 करोड़, बल्दियात के लिए 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखने की तजवीज़ थी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते की 24 अरब 7 करोड़ रुपया तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ तैयार कर रही। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल जी सदारत हेठि नए माली साल जी बजट जे लाइ सालियानी मनसूबाबंदी बाबति इजलास। वफाकी वज़ारतुनि सूबनि जा नुमाइंदा शरीक, तरक़ीअ जो सालियानो हदफ 4% ताईं जी तजवीज़। इजलास में ईंदड़ माली साल जे लाइ तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त नए माली साल जी बजट में 720 अरब रुपयनि जा नवां मनसूबा रखण जी तजवीज़ आहे। तरक़ियाती मनसूबा मुकमल करण जे लाइ 10,000 अरब रुपयनि जी घुर्ज आहे।

0: अठावी तरमीम में सिंध खे तकसीम करण जी ॻाल्हि आहे त जई उहा हुनखे कंहिं बि सूरत में क़बूल करण जे लाइ तयार न आहे. मुल्क जे भलाई जे लाइ, अवाम जे भलाई जे लाइ ऐं मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ, अवाम मज़बूत करण लाइ ज़रूर गौर थी. लेकिन अञा ताईं जेको मसलो हथ में न आयो आहे, जे करे हुन ते तबसरो करणु क़बल वक़्तु. लेकिन तक़सीम कंहिं बि सूरत ते जई उहा बर्दाश्त न कंदो.
1: अठावी तरमीम में सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं. मुल्क ऐं अवाम खे मज़बूत करण जे लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो. जेव आहे सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी. जेव आहे सिंध जे अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो त सिंध जा जे माण्हुनि पारां रद्द कयल पार्टी सूबे ते हुकूमत करे रही आहे, मौजूदा हुकुमरान वटि अवामी मैंडेट न आहे, असां हिननि खे तस्लीम नथा कयूं. जेसिताईं रियासत जी रिट क़ाइमु न थींदी, अमन बहाल न थींदो.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज. शाह लतीफ का सूफ.
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो. जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे. होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब. टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, पर जुमो 12 वॻे ताईं. एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर. वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
4: जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: करे धोखा तो कर कहियो, हर दुनिया हाथ जोड़े करे धोखा तो कर कहियो, मां तुझो तुम जो मां तुझो तुम जो अही तुल जो दिल पर अही मन जो मालूम तुम।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो जनाब यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि खूबसूरती आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि उस खूबसूरती को हमेशा के लिए मेंटेन भी कर सकते हैं, और जो हुसन आपको मिले वो हमेशा आपके पास ही रहे महफूज होकर। तो खूबसूरती को जो है ना वो हासिल करना मुझे लगता है कि आसान काम है, लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम बन जाता है, क्योंकि अक्सर हम चीजों को समझने में जरा सी देर कर देते हैं और चीजों को समझने में थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाए, मार्केट जाए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने क्या परचेज करना है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। और आप लोगों की स्किन के लिए जनाब ही तैयार किए गए नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया करें, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो हमेशा बरकरार रहे और आप लोगों को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही मजे मजे के प्रोडक्ट्स शामिल है, जैसे कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी फेस वॉश है, और ब्यूटी सोप है, लवली क्रीम है व्हाइट एज की, और डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है। उसके अलावा भी जनाब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जनाब लोशन है, हेयर रिमूवल लोशन है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के यूज के लिए तैयार की गई है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और एक मजे की बात है ये कि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि हम कहां से जाकर परचेज करेंगे, कैसे हमें मिलने वाले हैं, तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं और आपको आराम से इजीली जाकर आप वहां से परचेज कर सके। तो अगर आप हमें किसी भी सिटी से सुन रहे हैं, किसी भी गोट से सुन रहे हैं, तो बस आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन यहाँ पर अब बारी है कि आप लोगों को बताया जाए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक व्हाइटनिंग क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है। सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाजे जो है ना वो फर्क देने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर शामिल किया गया है विटामिन ई बीड्स को, और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ ये प्रोडक्ट्स तैयार किया गया है और फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप कोई भी, आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट लगा नहीं पाते हैं और ये सोचते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो स्किन मजीद खराब होने के चांसेस है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्टर से तस्दीक शुदा होने वाला प्रोडक्ट है, फुल जनाब आप लोगों की स्किन के लिए सेफ है। आप सिर्फ दो रातें इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को फर्क जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाती है, भरपूर तरीके से आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाती है। और आप लोगों की स्किन अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है, रूखी सूखी सी लगती है, काफी आंखों के हल्के पड़ चुके हैं, निशानात काफी सारे जमा हो चुके हैं, दाने नहीं जान छोड़ रहे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है डी स्किन फेस वॉश, जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है जो आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगा, आपकी स्किन को क्लीन बनाएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, और आपके चेहरे पर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, वो सारी रिमूव कर देगा, और आपकी स्किन जो है ना वो खिलती रहेगी और खूबसूरत रहेगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है, तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए, अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अप्लाई कर लें और दो रातें जो है ना लगातार लगाइए, उसके बाद देखिए आपको कितने अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अप्लाई कीजिए अच्छे वाले प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती का ना सिर्फ ख्याल रखें बल्कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाते रहें, और सिर्फ आपकी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए सेफ भी रखें। तो जल्दी जल्दी से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए, लड़के लड़कियां सब ही लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा कि आपने
क्या कभी किसी इंसान की झूठी तारीफ करी है? क्या आपको लगता है कि मैंने इस इंसान की झूठी तारीफ करी थी और आपको ऐसा लगता है कि वो जो मैंने तारीफ करी थी वो झूठी की थी? तो कई मरतबा वाकई हम लोगों की झूठी तारीफ कर लेते हैं, तो क्या आप भी करते हैं? आपने भी कभी किसी की झूठी तारीफ करी या नहीं, मुझे बताइए जल्दी से। 8881 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो 8881 पर मैसेज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और सेंड कीजिए 8881 पर। और फेसबुक पेज है जनाब जी लाड़काना FM 88.8, जी लाड़काना FM 88.8 का पेज आपको इजीली मिल जाएगा। पेज को फॉलो कर लीजिए और आपको वहां पर हमारी पोस्ट जो है ना वो लाइव मिलती है व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो के नाम से, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर

ओके जी ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो पिया और गाने सां गॾो गॾु तव्हां जा मैसेजेस आहिनि खे बि पढ़ंदा हलंदासीं पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो हफ़ीज़ चांडियो असांखे ॿुधनि पिया हफ़ीज़ साहब तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया

अच्छा सनावला ब्रोई कहते हैं कि अधिक टॉपिक हम किसी की तारीफ नहीं करते, आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं जी ए मोरो एफएम 88 से। सुने जी सुने, बहुत शुक्रिया। मोरो में मिल रहे ही नहीं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप जरा मालूमात लेकर जो है ना मुझे बताइएगा जरा। अच्छा वासा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक आया, तवा की आयो अदा, और कहते हैं प्यारो प्रोग्राम सोनी सिदरा मिठी। थैंक यू थैंक यू, इलाही सारी तारीफ करी छी। अच्छा अनवर भा, तव्हां जो मोहबत आहे तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया बाबा, फरमाइशूं त मूंखे लॻंदो आहे मां हलाईंदी आहियां, पर माण्हू अलाए छो चवंदा आहिनि त असांजी फरमाइशूं त हलाईंदी न आहे, करे मां सोचां पई त वरी फरमाइशूं बंदि करे छॾियां। न हलनि न ई कोई वरी दां कंदो। निदा ही जेको आहे न प्यार जो इज़हार करे पियो, कॾहिं कॾहिं असां ईअं प्यार जो इज़हार कंदा अॻिले माण्हू खे लॻंदो आहे त ही जहिड़ो करे पियो। अच्छा निदा अली आपका बहुत शुक्रिया मेरी जाना, आप हमारे साथ हैं। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक, इस जमाने में कभी कभी झूठी तारीफ करनी पड़ती है वरना लोग समझेंगे ये पागल है। अच्छा नहीं नहीं हिदायतुल्ला नहीं देख रही, अनवर भाई यो गानो मु कल ही हलायो हो, तव्हां जेको न कल मुझे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम तो पयो होंदो ना वो तव्हां बुधी सको था।

न बाबा न बाबा सड़ो न एक बे का सड़ा तो कम कि हलो रंग तारो सावरो मू एक बे का सड़ा ना उन्होंने रंग सावरो अव तुम भी न सड़ो जी तवे खूबसूरती को असर न अचे खूबसूरत रहो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा डी स्किन फेस वॉश लगा अगर न तो मिले तवे करीबी जनरल स्टोर तक तो डायल कर 03 15 799 0595

0: अच्छा ये माधुरी बारी सिद्रा बाबा आपकी आवाज की क्या बात है, वॉइस वेरी नाइस है। आप कभी मीरपुर खास आई हैं?
1: नहीं जी, मैं कभी मीरपुर खास नहीं आई हूँ।
0: और उम्मीद अली उत्तराधी हमारे सारे सलाम, किशोर कुमार, आदिल हिदायतुल्ला, राजा हमीरचंद, रंजन फरहान कोरी, प्लीज प्ले शमन। ओके जी, शमन हलायूं था। मकसूद मल्ला कहते हैं जवाब है झूठी या सच्ची तारीफ का तो पता नहीं, उसे पता जरूर चलेगा जिसकी तारीफ की जाएगी। हाँ यह भी गर्ल आए। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है। आज कोई सॉन्ग नहीं रिक्वेस्ट करूंगा जी। जी अच्छी बात है, कल सारे लोगों की मैंने लगता है कि गाने लगा लिए थे तो बटरे नहीं आने, तुम सब रेस्ट कयो सही। इरम कहती है अच्छा इरम क्या बात है, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। और बिल्कुल जी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लगाने से कोई मसला नहीं होगा। और ये हमारे साथ है बाजी, जब वो चाहते थे हम समझ ना पाए, जब हम चाहने लगे वो पास ना आए, आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। इमरान अली बिरोई भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं। भाई जनाब तो वही बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ है आगे साथ, बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और गोरे गोरे हो जाइए। और विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा झूठी सी तारीफ करना मुनाफ़की है बाजी, सॉरी हमसे ये काम नहीं होगा बाजी। हमें मुरीद अब्बास का गाना तो सुनाइए, थैंक यू। एंड आसिफ सोलंगी है, शमन सोलंगी है, मुदस्सर सोलंगी, सलीम एंड मुबशिर सोलंगी भी आगे साथ है। चलिए बहुत शुक्रिया सब भाइयों का, आप हमारे साथ हैं। कश्यप भी हमारा शो सुन रही है, कश्यप मेरी जान आपका वेलकम जी। बिल्कुल आप अपनी करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल कीजिए। ऑल स्किन टाइप के लिए है, सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगाते जाइए, गोरे गोरे पाले पाले बनते जाइए। और इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी products and e-skin beauty products.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो ए होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवजे पैं शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक।

0: रोजानो सुबुह 9 बजे का शाम 6 बजे तक पर जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सक्र वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-768।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दोनों सूरतों में आप ये मुझे जरूर बता दिया करें कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लगाना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हैं, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने किसी की झूठी तारीफ करी है।

सो हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में है और बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ माधुरी प्रोग्राम सुन रहे हो, वो जानना चाहते हैं जनाब के व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन तमाम प्रोडक्ट्स में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम चीजों को जो ना वो समझने में और चीजों को इस्तेमाल करने से पहले जो ना वो कुछ बातें ऐसी होती है जो कि आप जाने पहचाने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी चीजों में डिफरेंस करना ये नहीं जानते हैं तो भाई जाने आप इन चीजों को, क्योंकि ये आप लोगों के फायदे के मुताबिक होते हैं। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि ये सारे जितने भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना ये सारे नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा हैं। और एक मजे की बात है कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो, साबुन हो, फेस वॉश हो, फेयरनेस क्रीम हो, एक्नी ट्यूब हो। बस आप अपने मसले को जो है ना वो देखेंगे कि आपको क्या और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए और नाम लेके तलब कीजिए और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा तो डायल कीजिए 03-15-799-0595।

0: Lionware.
1: Okay, जी, so whitish beauty products आप इस्तेमाल करें, साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन लोगों के लिए जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया है या फिर नहीं, तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि डॉक्टर के नजदीक शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयार किया गया है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए।

ओगरी सकलीन आबास हमारे साथ मौजूद है। सकलीन भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू है तवां जो शो वेरी नाइस आए सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा। और ये हमारे साथी जी कश्यप, हेलो कश्यप शाला खुश आयो। अज भला सफा नंढो मैसेज कयो ते खैर ता है।

अच्छा छो छोकरी सिद्धा मुस्कान अच्छा तुम्हा फायसा वाली जो गानो बुझन चाहियो था पर तो नालो तो लिखियो ही कोने को सो मबे तू प्यारे भाजू वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग जंडो मरी का कुर्बान अली खास के लिए मेरे साथ माजू हेलो इमरान अली बिरोई भाई के थे आज सिद्धा टॉपिक है ना करें भाई हाँ भाई जान ये बंटो की जान है मैं आ रही हूँ कमेंट्स की जानिब सबर करें अच्छा सजाद अली जमाली है सिटी नवाब शाह शो इज नाइस सॉन्ग प्ले मुमताज मोलाई सोनो भी सोनो यू गानो वैसे काफी टाइम थियो असा कोन बुधो आ सो हलायन जी बिल्कुल कोशिश करना सी अजु न त सुभाणे असा जरूर बुधना सी ठीक आ अच्छा मकसूद तमाम जो गानों भी ऐसा सुबहाने लाइना सी ठीक है और मौजूद है जी वालेकुम अस्सलाम ए बी रिंद मैं अक्सर अपनी वाइफ की झूठी तारीफ करता हूँ जब वो गुस्से में होती है तो वैसे ये तो एक लाजमी सी बात बन गई है कि अपनी बीवी की तारीफ करें वो झूठी हो या सच्ची हो तारीफ आप लाजमी कर लिया करें और ये हमारे साथ ही बाजी हाय मस्ती मस्ती बस इतना ही मैसेज लिखा है बाजी हाय मस्ती मस्ती ए केड़ा तरीका है नाम भी लिख दिया करें अपना अल्ताफ खोसो जाग जानी हमारे साथ है कहते प्लीज प्लीज सजाद अली याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी डेडिकेट अजरा खोसो एंड यू वेलकम करते हैं आपको चाचा

अच्छा दर्द दिल लगते हैं क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा है वक्त मिला तो सोचेंगे मौसम खुशबू बातें सबा चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला तो सोचेंगे वक्त मिला तो सोचेंगे भाई पाकिस्तानी गाना है ना करे थोड़ी रिसर्च कर लिया करे

जादू, धूप वाला जादू. ओके हजार भाई, क्या बात है आपकी, बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. और वासु भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, हिदायतुल्ला. चलें ये गाना हम कल लगाएंगे, बस आप याद दिलाइएगा मुझे. अनवर भाई इतना जो है ना वो गुस्से में मत रहा करें, थोड़ा सा रिलैक्स कूल रहा करें, ठीक है. और नखा अलावा आदिल क्या कहते हैं, आपका भी कम्बर्ट आई है ना? नको बिल्कुल नहीं. किशोर भाई कहते हैं समझ नहीं आया तब इतना हंसी हो, अगर समझ आता तो वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आया था, वो पढ़ा नहीं मैंने. बात ऐसी थी कि बताई नहीं जा सकती थी. समझ आया करें. अच्छा बिलाल लोधरा हमारे साथ मौजूद हैं. बिलाल आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया. आप हमें पंजाब से सुन रहे हैं. ओके जी, सुफियान अहमद हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम सुफियान, कहाँ गायब थे? उल्टा ये मुझे कह रहे हैं कि आप सिद्रा कहाँ गायब थे. अरे भाई मैं यही थी, आप गायब थे. अच्छा शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है. हेलो, पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया.

0: बस वजह इस
1: वो लड़की है या जादू वो लड़की है या जादू।
0: हाँ जी भाई जान, वो लड़की जादू हो गई है क्योंकि उसने वायरस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और उसकी खूबसूरती देखकर ये इंसान जो है ना ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या हो गया है। वो ये जरा आपको मैं बात जरा क्लियर करूंगी कि वो जो लड़की है ना वो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो आप भी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी पाली पाली हो जाए, खूबसूरत हो जाए, लोग आपकी बिल्कुल ऐसे ही तारीफ करें।

ओके जी, सो गाना हमने बहुत ही अच्छा वाला सुना और उसके साथ साथ हैं जी यहाँ पर असद बलोच हमारे साथ मौजूद के थे। अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा, आप कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी आप। मैं लेट शामिल हो रहा हूँ शो में, आपकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है और शो आपकी आवाज की वजह से सुपर भी। आज के टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि करनी पड़ती है किसी ना किसी की झूठी तारीफ।

वैसे हाँ असद किया करे, कोई मसले की बात ही नहीं। ये छोटी सी जो खुशी है ना वो लोगों में बांटा करे, वैसे भी आजकल लोग खुशियां कम ही बांट रहे हैं, तो तारीफ कर लिया करे। हाँ तो आगे छापे लगे गानों कला कलंदु छापेला। इसको तो खत्म होना ही था, उसको जाना था, उसको जाने थी नगमा।

0: अच्छा किशोर भाई, आप सोच लें कि आपने तारीफ करनी है या नहीं क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं जी फजीला सिंधी, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहती हैं? गुड आफ्टरनून, सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सभी लड़कियों को। टॉपिक नहीं नहीं डियर, ओए प्यारी
1: मेरे सरा करीब हो गई।
0: मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरी झूठी तारीफ करते हैं, हस्बैंड सारे ऐसे होते हैं।
1: ना ही बादलों के बरसात हो गई, मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ
0: पर कहती कुछ भी नहीं,
2: कहती कुछ नहीं।
1: कहानियों की एक परी आज ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है।
0: टाइम खत्म हो गया भाई मेरे शो का, तो अब मुझे जाना पड़ेगा।
1: ये दिल खुशी से भूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला।
0: ओके सो वरी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है। बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा और साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी बात कह दी हो जो आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मैं माजरत कर देती हूँ। सो मुकलानी नाहे बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: ढाडो सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

के नौजवान फिक्रमंद है कि ऐसा क्या करें कि आने वाला वक्त इनकी जिंदगी के लिए बेहतरीन साबित हो। मुस्तकबिल का मामला उनके लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है। किसी को फिक्रे माश ने परेशान कर रखा है तो कोई किस्मत से नाला है। कहीं खानदानी झगड़े हैं, कहीं घरेलू मसाइल, कोई गैरों की बेतनाई से दिल शिकस्ता है, तो कोई दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में लगा हुआ है, तो कोई हसद की आग में जल रहा है। जब मुश्किल और सख्ती आती है तो अक्सर नौजवान हिम्मत हार बैठते हैं। ख्यालात और हालात का दबाव उनकी छोटी छोटी

0: से 3-4 बजे तक का वक्त मोस्टली
1: सकरण की हो
0: जो है तो कोशिश होनी
2: चाहिए रहो जी
0: शाम करेंगे देखना चाहेंगे लाइन पर कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वेलकम कहेंगे अजीज क्या हाल है आपकी अलहमदुल्ला मैं सुना रही हूँ आप बताइए आप शांति

0: ओ माय गॉड, मेरा भी दिल चाहता कहीं भी जाने का, गर्मी का बहुत मौसम है, आता कोई और किसी और का नाम बता दे।
1: हेलो
0: जी जी बताइए। जानी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। थैंक यू सो मच। 18 साल से आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं।

0: सभिनी पारां वालेकुम अस्सलाम अदा महिरबानी तव्हांजी जेके मेरे रियल लिसनर इहे वारे प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच आप लोगों की मशहूर हूँ 18 साल से जो मैं आरजे गुलजार तमाम तक क्रेडिट आप लोगों को जाता है नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर आप खुश आमदीद कहते हैं कौन बात कर
1: रहे हैं
0: आदाब भली कर

0: भेज रहे हैं हम आपको।
1: आपने आज अच्छा टॉपिक रखा है, आज तो आप सॉन्ग भी प्ले करेंगे ना, चांद से पर्दा कीजिए।
0: नहीं, मेरा पर्दा हो जाएगा एफएम से, मैं नहीं कर सकती। ये मैं वैसे ही सेल फोन पे या कंप्यूटर पे सुन सकती हूँ, ऑन एयर ये प्ले किया ना तो रेडियो से मेरा हमेशा का पर्दा हो जाएगा। कहीं आपको गवारा है ये?
1: अभी मैं अपने भांजे को लेकर जाऊंगी, अब सुन रहे मान को।
0: अरे वाह, क्या कहने, आपके दूसरे भांजा भांजी सुन रहे हैं आपको? दूसरे भांजा भांजी है इस वक्त आसपास?
1: आपने क्या कहा आपने?
0: मैंने कहा दूसरे भांजा भांजी है आसपास आपके?
1: बहुत है माशाल्लाह, 8 दिन है उनके बच्चे सबसे हैं, लेकिन ये भांजा मेरे ऐसा है, मैं उसको जब ये छोटा था ना, फिर मैं जब भी इसको अपने साथ लेकर जाया करती थी साथ, तो अभी माशाल्लाह वो बड़ा हो गया है 18 साल का। जब भी कहीं जाती हूँ ना, बहुत कम निकलती हूँ घर से, लेकिन इसी के साथ जाती हूँ।
0: चलिए, अल्लाह आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखे। यास्मीन, हमने ब्रेक पे जाना है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू।
1: अल्लाह
0: ओके जी, ओके जी, बातों के सिलसिले को ब्रेक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट तशहीरी वक्फे की जानिब जाना है। तशहीरी वक्फे के बाद जो है हम अगेन आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है, गूंज रही है जीएफएम 88 की सरमस्त आवाज से।
3: तो डालो धमाल और बोलो
2: जीएफएम 88
3: सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: समन गोड से प्रेम सागर कहते हैं हाय गर्ल कैसी हो, और डॉक्टर अशोक कुमार मदन लाल अंसर. अच्छा मैं अपने दोस्त को ले जाऊंगा. ओके गुड लक, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया. और ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, एज यूजुअल यहाँ पर हम एक छोटे से तशहीरी वक्फे की जानिब जा रहे हैं. इस ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं. स्टे विद अस, स्टे ट्यून जीएफएम 88 नेटवर्क.
1: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज. GAFM 88 की आवाज.
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
5: सुनते रहो GFM 90.8.

कैसी हो आप अस्मा लगारी? आई एम गुड अस्मा, आप बताओ आप कैसी हो? मैं आपके शो का वेट कर रही थी, सोच रही थी कब आओगी। मैं 3 बजे के बाद आती हूँ। आपके वेट करने से क्या होना है अस्मा? थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू अस्मा। अगर चांद पर जाना है तो मैं अपनी अम्मी को और आपको साथ लेकर जाऊंगी। नहीं जी नहीं अस्मा, मम्मी को लेकर जाइएगा, एक ही बंदे की गुंजाइश है। मुझे नाचीज को गुलनाज कहते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, अब आपने टेक्स्ट किया, आई डोंट नो आप कौन साहिब हैं या साहिबा हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नहीं जी नहीं, मेरा कहीं भी जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है। ठीक है, गर्मी में बंदा घर में ही रेस्ट करे। आपको भेजना है चांद पे, ठीक है? आपने जाना है। मैं आपकी फैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सारा दिन आपको याद करती हूँ, हैला तभी मुझे हिचकियाँ आ रही होती है। हर वक्त सोचती हूँ, याद करती हूँ कि आपका शो कब आएगा, आपकी आवाज़ सुनूंगी मैं। ओ माय गॉड अस्मा, अथोला रखिए अजीज, इतना ही रखे कि दिल बहल जाए ना, इस कदर टूट के चाहे कि दम निकल जाए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू अस्मा। मीर अलाडीनो खान तालपुर, आपका शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम आपको, सेम टू यू, थैंक यू। चलिए जी, आपकी कॉल्स के थ्रू भी आपको प्रोग्राम में शामिल, प्रोग्राम कहते हैं, आपने डायल करना 031-366-1568।

0: ठीक ठाक हूँ। आप बताइए चांद पे किसे साथ लेके जाएंगे आप? हल्ला अमीर बख्श मरी बेचारे इस वक्त ना जाने कहाँ होंगे, बड़े भाग उनके भाई, आप उन्हें चांद पे साथ लेके जा रहे हैं क्या? कहने आए अच्छी बात है। चले कोशिश करेंगे आपको ब्रेक के बाद चमन सुनवाएं, बहुत शुक्रिया। ओके जी, और ये भी हमारे जो है रेगुलर लिस्नर ही हैं, नजर लगा रही। नेक्स्ट देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है? अदा क्या कहेंगे इस सवाल के हवाले से, चांद पे जाना है आपने, अकेले नहीं जाने देंगे आपको, किसे साथ ले जाएंगे आप? वो तो अमीर बख्श के साथ निकल गए पहले ही आपसे। वो जा चुके हैं, अब आप बताएं। चले ठीक है, जब वापसी आए फिर ले जाइएगा। ओके, क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
1: सबको सलाम, रुस्तम तवर को सलाम, नागेश को कर दो।
0: ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका सबकी जानिब से। थैंक यू सो मच असमा, बहुत शुक्रिया चंदा आपका भी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अदा वेलकम कहेंगे, आप रेडियो पे सुन रहे होंगे, लोग आपको चांद पे लेके जा रहे हैं, आप ये बताएं आप जाना चाहेंगे या नहीं? और आपने किसको साथ लेके जाना है?
1: अभी मुझे कुर्बान खास करी कुर्बान
0: खास करी। चले अच्छी बात है, गुड हो गया ये तो। दोस्तों के नाम ले लें फिर हम ब्रेक पे जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अदा सबनी पारा, थैंक्स। और अदा अजीज ने भी मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा इस साइड ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, और आपने मुझे बताया 18 इयर्स मुझे कंप्लीट हो गए हैं आज। बंडल ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, प्लस आप लोगों का 99% 100% 1000% अनलिमिटेड परसेंट तो रब की मेहरबानी है, लेकिन उसके बाद हमारे लिसनर्स की मेहरबानी है जो आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, चार चांद प्रोग्राम में आप ही लगाते हैं। फरहान थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वेलकम कहेंगे आपको। और ना खुदा दिल देता, ना किसी की याद आती, ना मोहब्बत करते, ना किसी का इंतज़ार होता, मरते हैं तेरी याद में, मरने के बाद क्या होगा, चेहरे से कफन हटा के देख लेना, इन मासूम लबों पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा। ये पोइट्री ना जाने किसने लिख के भेजी है, विसरे गोट कानवर अली मरी, भली कर अदा तवा के भी, बहुत शुक्रिया आप सबका। और जनाब ब्रेक का वक्त हुआ जाता है तो जनाब ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद तशहीरी वक्फा होगा, ब्रेक न्यूज़ और तशहीरी वक्फे के बाद दोबारा लौट कर आते हैं।
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: खतरे में जारी जंग के खात्मे बारे फील्ड मार्शल के कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआगू आयु, जंग जल्द खत्म न थी तो सभी के वधिक माली भार बर्दाश्त करो पव। कोशिशों जारी रखंदो।

सिंध में बदमनी जी बात वधीक ॾह इंसानिया साहब जो कार तकरार ॿिनि ॼणनि जूं हयातियूं गिड़काए वियो। घोटकी भरिसां बि ॻोठाणो गोलियुनि जो खाॼ बणिजी वियो। लाड़काणो जे माहौटा थाणे जे हद में मुगेरी बिरादरी जी ॿिनि में पुराणे तकरार सां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो। औरत ज़रीना ख़ातून, संदसि पुटु ज़मीर रोशन ऐं धीउ साइमा मुगेरी क़तल, ॿ ॼणा ज़ख़्मी। पुलिस मूजिब मक़तूल धुर ते बिरादरी जे हिकु ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो। लाड़काणो में इलाहाबाद थाणे जे हद में पसंदि जो परणो कंदड़ जोड़ो क़तल, हथियारबंद औरत फिरदोस ऐं संदसि मुड़ुस जावेद कोरकाणी खे क़तल करे फरार थी विया। मियां साहब वेझो बखराणी बिरादरी जी बिंदुरनि में कार ऐं तकरार सां छेड़ो, ॿ ॼणा क़तल, औरत ज़ख़्मी। मक़तूलनि में अब्दुल जबार ऐं आगा असदुल्लाह बखराणी शामिल, औरत मारवी ज़ख़्मी थी पई। घोटकी वेझो ॻोठाणो नादिर सुंदराणी हथियारबंद सां क़तल, मक़तूल जे वारसनि जो घोटा धुर ते ॻोठाणे खे मारण जो इल्ज़ाम, कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस पारां कुझु माण्हुनि खे हिरासत में वठण जी दावा।

रोड़ी जी तालुका अस्पताल में औरत अणॼातल शख्स जो लाश छॾे फरार नावारू औरत मुबैना तौर हिकु शख्स जो लाश रिक्शे ज़रिए अस्पताल छॾे फरार थी वई इतला ते पुलिस जांच शुरू करे छॾी पुलिस मुझे पोती शख्स जी उमिरि 50 साल लॻी रही आहे सुञाणप जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि कैरबर भरिसां शाह हुसैन थाणे जे हद ॻोठ मिठू मरी में गुज़िरियल ॾींहुं हथायल पीसन शख्स जे लाश जी सुञाणप थी वई पुलिस मुझे पोती पीसन ज़हूर ख़ान वरत करीम बख़्श रहीमिया ख़ान जो रहवासी आहे कराची जे डिफेंस वारे इलाइक़े मां पंजाब जे ज़िले रहीमिया ख़ान जे DPO इरफान समो जे घर मां चोरी जवाबदार इरफान समो जे फ्लैट मां लैपटॉप मोबाइल फोन ऐं ॿियो सामान खणी विया पुलिस मुझे फ्लैट में इरफान समो जो भाउ रहंदो हो जांच जारी आहे वीरा रोड रेलवे स्टेशन भरिसां मुसाफ़िर ट्रेन सखर एक्सप्रेस जी इंजन फेल सख़्त गर्मी सबबि ट्रेन में वेठल औरतुनि ऐं ॿारनि समेत सभई मुसाफ़िर गर्मीअ सबबि सख़्त परेशान केतिरा ई बेहाल थी विया ॿिनि कलाकनि बाद कराची एक्सप्रेस सां गॾु सखर एक्सप्रेस खे रवानो कयो वियो

0: ओरियो लाल फरसा सुजुकी वाह में किरी पई ड्राइवर बुडी वयो गोला जारी खैरपुर वेझो वाह में बुडी वेल बजन हथ ना आया बारिश सख्त परेशान बेगमान जे वट मीरवा केनाल में बुडी वेल अली रजा कुरैशी भी हथ ना आयो सच वाह में बुडी वेल नव वरन जी निंगरी मिसबा फुलपोटो जी भी गोला जारी सदस बारिश परेशान मौसमियात खाते सुभाणे सिंध के मुख्तलिफ़ जिलों में तूफान ए बरसातुन की कथी कर छी मौसमियात खाते मूजिब खैरपुर सांगर नवाबशाह नौशहरो फिरोज जिलों में किथे तेज त किथे हल्की बरसात पैजी सके थी अज रात M9 मोटरवे के चौधारी तूफान अची सके थो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं फरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
4: GFM 90.8

0: हर पहर जिंदगी की लहर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज खूबसूरती का असल राज

सेकेंड क्वेश्चन का आंसर और ये बताना है किस मुल्क में स्नेक यानी सांप नहीं पाए जाते, कौन सा ये जो है ये कंट्री है

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
2: हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, मरीज जो मुआइनो कर रहे है। हर किस्म के आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन की पथरी, बवासीर, हाजमे की खराबी, बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीज जो इलाज कर रो है। प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, रोजाना सुबह 10 का शाम 5 ताई। जुम्मो मोकल एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर, राब्ते जे लाए 0326-22-00-440।
3: जी FM 88
1: सिंध की आवाज़।

जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिशेश सयाल से, हम शौलाए अर्ज़ गुलफाम से जल जाते हैं। खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। रब्ते बे नाम पे हमने किया ना कहेंगे दुश्मन, आशना जब तेरे पैगाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता है

बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाय की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और काफी टाइम से हमने जो है परवीन शाकिर साहिबा की कोई पोइट्री अपने लिसनर्स को नहीं सुनाई थी, आज नजर के सामने से ये गजल गुजरी तो हमने सोचा आपकी समातों की नजर करते चलें।

न तन देखे रास्तों से गुजरना है मुझे, तब कहीं जाके समंदर में उतरना है मुझे। मेरे आंगन में भी एक कौसे कजा एक दिन उतर, जिंदगी में तेरा एक एक रंग भरना है मुझे। देखता हूँ क्यों घने पेड़ों के सायों की तरफ, जब सरे मंजिल पहुँच कर ही ठहरना है मुझे। मेरे हर दिल में जो छाले हैं वो मैं रहूंगा खुद में सिमटा हुआ, एक ना एक दिन तो बहर सूरत बिखरना है मुझे। अनगिनत अंग पग देखे रस्तों से गुजरना है मुझे, तब कहीं जाके समंदर में उतरना है मुझे, तब कहीं जाके समंदर में उतरना है मुझे।

तो हमारा आज का प्रोग्राम जाते जाते छोटी सी बात के साथ ये बात दिल से निकली इस उम्मीद के साथ यकीनन आपके दिलों में उतरेगी। एक फकीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मालदार आदमी, तुम्हें कफन देकर दफना दूंगा। फकीर बोला, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो। जब मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़ कर नेकियां करने लगते हैं, अगर कदर करनी है तो जिंदगी में करें। यही है आज का पैगाम। आप सबके नाम नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए यानी शाम 8 बजे तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस इवनिंग।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सदाई नुकसान भोगियो आहे बियूं जमायतूं BISP के भी खत्म करण चाहन थियूं सदन सोच आहे त BISP सूबन हवाले कयो वञे गिलगित बल्तिस्तान जे इलाके शगर में चूंड जलसे के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त वफाक जीबी ऐं आज़ाद कश्मीर बाबति वज़ाहत ख़तम करे आज़ाद कश्मीर ऐं जीबी बाबति फ़ैसिलो इस्लामाबाद में वेठल को बाबू न पर हितां जी अवाम खे करणु घुर्जे जीबी ऐं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान में चूंड वक़्त थियणु घुर्जे पीपल्स पार्टी सदाई जंग ख़िलाफ़ रही आहे खिते में जारी जंग जे ख़ात्मे वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशनि जी कामयाबी लाइ दुआगू आहियूं जंग जल्द ख़तम न थी त सभिनी खे वधीक माली बार बर्दाश्त करणो पवंदो।

खिते की वही ताकत यूरोपी यूनियन जो भाईवार है। अमेरिका ईरान विच में जंग की खात्मे लाए पाकिस्तान जो किरदार भी वाखण जोगो है। यूरोपी यूनियन के नुमाइंदा काया कालास है तो पाकिस्तान के आलमी कानून मोजिब पंजी अवाम की दिफा जो हक हासिल है। खिते की मौजूदा सूरत हाल में मसले जो हल फिजाई हमला न पर गाल ही नायब वजीर आजम इसाक डार तो यूरोपी वफद से हिंदुस्तानी फितने की अफगानिस्तान में मौजूदगी गाल सिक्योरिटी मामल से भी तफसीली गाल पाकिस्तान यूरोपी यूनियन से गजी खिते में चटादार अमन के क्याम लाए कोशिशों जारी रख। कामयाबी की दावाओं दौरान अमरीका ईरान जहा एक बे थाकन से हमला। अमरीकी फौज की ईरानी बेट सिरक से फौजी थाकन से हमला। जवाब में ईरानी फौज जहा कुवैत में अमरीकी अड्डन से ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब है तो ईरान की बेट सिरक में टेली कम्युनिकेशन टावर से हमले के जवाब में अमरीकी फिजाई अड्डे के निशानों बढ़ाया वो। कुवैती फौज है तो मुल्क से दुश्मन की ड्रोन हमलों के नाकाम बढ़ाया वो है। हकीकत में मुआदो करण चाहे तो जो अमरीका असा गड रहंदड़न सुठो साबित थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो मुखालिफ सकून से वेहन पांजो कम कन। आखिर में सब कुछ सुठो ही थी। ईरान कदें भी एटमी हथियार न ठाए सकदो। वफद के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो अमरीका से जंगबंदी की भंज कड़ी करण जो इल्जाम। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ है तो बहरी नाकाबंदी ए लबनान से हमलों में वाद साबित करे थी तो अमरीका जंगबंदी से अमल न कर रो है। ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई तो ईरान दिफा जो हक इस्तेमाल कदो रहंदो हमलों जो जवाब दिनों वो पाड़ेसरी मुल्क पाजी सरजमीन ईरान से अमरीकी मीडिया की ईरानी सदर मसूद पशिकियान की मुस्तफी थियण की दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब सदर मसूद पशिकियान की इस्तीफा की तरदीद कर छी। अमरीकी मीडिया मूजिब पशिकियान अख्तियार घटजन से इस्तीफा दिनी है। पासदारान इनकलाब तरदीद कर मसूद पशिकियान सदारत का मुस्तफी ना है थो। चालीस साल 2026-27 की बजट तैयार थी वही। 12 जून से सिंध असेंबली में पेश थियण जो इम्कान। नए माली साल में गुजरियल माली साल वाले तरक्याती बजट रखने की तजवीज। सूबाई एडीपी बजट 520 अरब ए जिले तरक्याती बजट 55 अरब रुपया रखने की तजवीज तैयार। स्कूल एजुकेशन खाते की तरक्याती बजट 17 अरब 82 करोड़ ए कॉलेज एजुकेशन खाते की 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज खाते लाए 2 अरब 64 करोड़ ए मकानी खाते लाए 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखने की तजवीज शामिल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते की 24 अरब 66 करोड़ रुपया तरक्याती बजट रखने की भी तजवीज तैयार कई वही।

0: सिंध में पदमनि जी बाह वधीक ॾह इंसानी जानियूं गड़काए वई। लाड़काणे भरिसां औरत ॿिन पुटनि ऐं धीअ समेत क़तल। मियां साहिब भरिसां कार तकरार तां ॿिनि ॼणनि जूं हयातियूं गड़काए वियूं। घोटकी वेझो बि ॻोठाणो ॻोल्हिन जो खाज बणिजी वियो। लाड़काणे जे माहूटा थाणे जे हद में मुगेरी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो। औरत ज़रीना खातू, संदसि पुटु ज़मीर, रोशन ऐं धीअ साइमा मुगेरी क़तल। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस मौजिब मक़तूल दौर ते बिरादरी जे हिकु ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो। लाड़काणे में ई अलाहाबाद थाणे जे हद में पसंदि जो परणो कंदड़ जोड़ो क़तल। हथियारबंद औरत फिरदोस ऐं संदसि मुड़ुसु जावेद कोरकाणी खे क़तल करे फरार थी विया। मियां साहिब भरिसां बखराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में कार तकरार तां जेड़ो ॿ ॼणा क़तल थी विया, औरत ज़ख़्मी। मक़तूलनि में अब्दुल जब्बार ऐं आगा असदुल्ला शामिल। मारण जो इल्ज़ाम। कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस पारां कुझु माण्हुनि खे हिरासत में वठण जी दावा।
1: जेकॾहिं 28 तरमीम ने सिंध खे तक़सीम करण जी कॾहिं आला त जई आहे, हुनखे कंहिं बि सूरत में क़बूल करण जे लाइ तयार न आहे। मुल्क जे भलाईअ जे लाइ, आवाम जे भलाईअ जे लाइ ऐं मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ, आवाम खे मज़बूत करण जे लाइ कंहिं पॉलिसी ते जई आहे, हुन ते ज़रूरु गौर कंदी। लेकिन अञा ताईं जेको मसलो हथ में न आयो आहे, हिनजे करे हुन ते को तबसरो करणु क़बल अज़ वक़्तु हूंदो। लेकिन तक़सीम कंहिं बि सूरत ते जई आहे बर्दाश्त।
0: 28 आइनी तरमीम में सिंध जी विरांगे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं। मुल्क ऐं आवाम खे मज़बूत करण लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो। सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। जेई वा अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो आहे त सिंध में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। जेसि ताईं रियासत जी रिट क़ाइमु न थींदी, अमुन बहाल न थींदो। एमक्यूएम वफ़ाक़ी बजट ते वॉन्ट ॾियण लाइ अॻूणे गवर्नर कामरान टिसोरीअ जी बहाली जो शर्त रखी छॾियो। एमक्यूएम अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त कामरान टिसोरी जी बहाली संदन रेडलाइन आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ दिलि वॾो करे कामरान टिसोरी खे ॿीहर सिंध जे गवर्नर तौरु बहाल करे। सखर जी इंसाब अदालत सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श महर जी ज़मीननि जा तफ़सील पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नेब जी दरख़्वास्त ते अदालत ॿुधणी कई। अदालत चयो त सखर ऐं घोटकी ज़िलनि जे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में मोहम्मद बख्श महर जी केतिरी ज़मीन आहे, संभालींदड़ केरु आहिनि, तफ़सीली रिपोर्ट जमा कराई वञे। केस में गिरफ़्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत खे ॿुधणी मुलतवी करे ईंदड़ ॿुधणीअ खे पिनकीअ खे वीडियो लिंक ज़रिए पेश करण जी इजाज़त ॾियण जी दरख़्वास्त। अदालत दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। गार्डन थाणे ते दाख़िल केस में शामिल ॿिनि जवाबदारनि ज़मानत लाइ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। जवाबदार सोहेल रहमान ऐं ज़ीशान ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कई। पुलिस पारां ज़मानत वारी दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त। घोटकी भरिसां लजालट जो शिकार थियल नारी हूरा चाचड़ 164 जी बयान लाइ अदालत में पेश। अदालत ॿुधणी 4 जून ताईं मुलतवी कंदे जवाबदारनि खे साॻी ॾींहं ते पेश थियण जे लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। केस में नामज़द हिकु जवाबदार निसार चाचड़ गिरफ़्तार थियल। मुश्ताक चाचड़ समेत 3 जवाबदार हिफ़ाज़ती ज़मानत ते आहिनि। रोहिड़ी जे तालके अस्पताल में औरत अणॼातल शख़्स जो लाश छॾे फरार। अणॼातल औरत मुबैना तौर हिकु शख़्स जो लाश रक्षे ज़रिए अस्पताल छॾे फरार थी। इतला ते पुलिस जांच शुरू करे छॾी। पुलिस मूजिबि फौती शख़्स जी उमिरि 50 साल लॻी रही आहे। सुञाणप लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। खैरपुर वेझो शाह हुसैन थाणे जे हद ॻोठु मिठो मरी मां गुज़िरियल ॾींहुं थायल पीरसन शख़्स जी लाश जी सुञाणप थी वई। पुलिस मूजिबि फौती पीरसन ज़हूर ख़ान वलद करीम बख़्श रहीमिया ख़ान वासी आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ए बादी बवासीर इनन सबनन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक पर जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए रबते जे लाए 0327-99-84-763
4: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: सदन सोच आए तो BISP सूबन हवाले कयो वने
0: आप सुन रहे
1: गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शकर में जू जलसे के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आए तो वफाक जीबी आजाद कश्मीर बाबत वजारत खत्म करे आजाद कश्मीर
2: हाँ हैरत तंग के जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीका इलाज से शिफा हासिल करे जी हाँ हाँ अमन के पहले शहर सकीर में हाजी इलाज होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूर मारू खानदानी सदन में कहा सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हरिश जावेद राजपूता HMS सिंध HMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी
1: एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शरीक सिंध के नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत के रवैये से सख्त एहतजाज ज़रीन जो चवण है रानीपुर मोरो रोड की तामीर लाए 47 अरब रुपये में रुगो 5 अरब रुपया रखा वाया सखर रानीपुर टडो आदम टडो अलिया रोड लाए भी 150 अरब रुपये में रुगो 3 अरब रुपया रखा वाया इजलास में शरीक जाम खान शोरो है तो वफाकी बजट में सिंध के रोडन के नजरअंदाज किया वो लगे तो बोर्ड लगाए रोड बंद करना पौधा 13 साल का रुगो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बेन सूबन से खर्च किया पे वे सिंध के नजरअंदाज किया पे वे जैसे इन मामले से नजरसानी की वे पाकिस्तान खिते की वही ताकत यूरोपीय यूनियन जो भाईवार है अमेरिका और ईरान विच में जंग के खात्मे लाए पाकिस्तान जो किरदार में वाखाण जोगो है यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काया कालास है तो पाकिस्तान के आलमी कानून मूजिब पैंजे अवाम की दिफा जो हक हासिल है खिते की मौजूदा सूरत हाल में मसले जो हल फिजाई हमला न पर गाल ही नायब वजीर आजम इसाक डार तो यूरोपीय वफद से हिंदुस्तानी फितने की अफगानिस्तान में मौजूदगी गाल सिक्योरिटी मामलों से भी तफसीली गाल पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से गिते में जटादार अमन की क्याम लाए कोशिशों जारी रखा

0: सिंध में बदमनी की बाह ॾह इंसानी जानू गड़काए वही लाड़काने वेझो औरत बिन पुटन धी समेत कतल मियाँ साहब भरसा कारें तकरार ताम बिन जणन जो हयातियों गड़काए वह घोटकी वेझो बे गोठानो गोलिन जो खाज बणजी वो लाड़काने के माहूटा थाने के हद में मुगेरी बिरादरी के बिन धुरन में पुराने तकरार ता हथियार बंदन जो घर ते हमलो औरत ज़रीना खातून संदस पुट ज़मीर रोशन ए धीअ साइमा मुगेरी कतल बजाणा जख्मी थी पाया पुलिस मौजिब मकतूल दुर ते बिरादरी के एक जणे के मारण जो इल्ज़ाम हो लाड़काने में ही अलाहाबाद थाने के हद में पसंद जो परणो कंदड़ जोड़ो कतल हथियारबंद औरत फिरदोस ए संदस मुड़स जावेद कोरकानी के कतल कर फरार थी पाया मियाँ साहब वेझो बखराणे बिरादरी के बिन धुरन में कार ए तकरार ता झेड़ो बजाणा कतल औरत जख्मी मकतूलन में अब्दुल जब्बार ए आगा असदुल्ला बखराणी शामिल औरत मालवी जख्मी थी पई घोटकी वेझो गोठानो नादर सुंदरानी हथियारबंदन हथा कतल थी वो मकतूल के वारसन जो घोटा धुरते गोठाने के मारण जो इल्ज़ाम कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस पारा कुछ मानू के हिरासत में वठण की दावा
1: अठावी तरमीम में सिंध के तकसीम करने की गाल जयू आ उनके कें भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार ना है मुल्क की भलाई के लिए अवाम के भलाई के लिए मुल्क के मजबूत करने के लिए अवाम के मजबूत करने के पाकिस्तान में जयू आते जरूर गौर कभी लेकिन अजा तक मुसबत हथ में ना आयो इन तबसरो कर कबल अज वक्त लेकिन तकसीम कें भी सूरत में जयू आ बर्दाश्त
0: तरमीम में सिंध की विरहांगे की गाल थी तो कबूल न कदासी मुल्क अवाम के मजबूत करने लाए तरमीम आंदी वही तो डिठो वो सिंध जो विरहांगो कें भी सूरत में कबूल न होंद जयू अगवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो है तो सिंध में बदमनी चोट चढ़ल है जेस तक रियासत की रिट कायम नी अमुन बहाल नी एमक्यूएम वफाकी बजट से बॉन्ड दियण लाए अगूणे गवर्नर कामरान टिसोरी की बहाली जो शर्त रखी छो एमक्यूएम अगवान फारूक सत्तार है तो कामरान टिसोरी की बहाली संदन डेडलाइन है वजीर आजम दिल वडो करे कामरान टिसोरी के बीहर सिंध के गवर्नर तौर बहाल करे सखर की इतसाब अदालत सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर की जमीन जहा तफसील पेश करने जो हुक्म दे छो नेब की दरख्वास्त अदालत बुधनी कई अदालत सखर ए घोटकी जिलन के केड़न केड़न इलाकन में मोहम्मद बख्श महर की केतरी जमीन है संभालींदड़ केर आन तफसीली रिपोर्ट जमा कराई वजे मंशियात केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकी के पुलिस अदालत में पेश न कयो अदालत के बुधनी मुलतवी करे ईंदड़ बुधनी ते पिनकी के वीडियो लिंक जरिए पेश करने की इजाजत देने की दरख्वास्त अदालत दरख्वास्त ते फैसलो महफूज करे वरतो गार्डन थाने ते दाखिल केस में शामिल बिन बिन जवाबदारन जमानत लाए अदालत में दरख्वास्त दाखिल कराए छी जवाबदार सुहेल रहमान सीशान जमानत लाए दरख्वास्त दाखिल कई पुलिस पारा जमानत वारी दरख्वास्त की मुखालफत

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशहूर ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुल्की चैंबर्स जे नुमाइंदड़ जी मुलाकात। वापारियुनि शहबाज शरीफ खे नए माली साल जी बजट बाबति तजवीज़ूं पेश कयूं। वज़ीर आज़म पारां वापारियुनि खे बजट में तजवीज़ुनि खे शामिल करण जी ख़ातिरी। शहबाज शरीफ चयो आहे त वापारियुनि खे टैक्स रिफंड वारो मसइलो 15 जून ताईं हल कयो वञे। वफ़ाक़ी रिथाबंदी वारी वज़ारत जा नवां मनसूबा शुरू करण ऐं फंड रखण खां ख़ुतो जवाब। सूबनि खे तरक़ियाती कम लाइ NFC मां ख़र्च करण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त PSDP में एतिरा फंड मौजूदु ई न आहिनि जो नवां मनसूबा शुरू करे सघजनि। सूबाई तरक़ियाती बजट 3000 अरब खां वधी वई आहे। सूबा अमीर थी विया आहिनि ऐं वफ़ाक वटि फंड न आहिनि। हिन वक़्तु जारी मनसूबनि लाइ 3377 अरब रुपया घुरबल आहिनि। असां वटि माली गुंजाइश घटि आहे। कंहिं बि नए मनसूबे जी ज़रूरत न आहे। बलोचिस्तान लाइ 100 अरब ऐं 150 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं फाटा जे ज़िम थियल ज़िलनि लाइ रखिया आहिनि। MQM मुर्दा सियासत खे जीआरण जी नाकाम कोशिश करे रही आहे। गैस जी बि ज़िमेवारी वफ़ाक़ी हुकूमत जी आहे। के बि सिंध न पर वफ़ाक़ जी मातहत आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत पाणी बोहरान बाबति इरसा खे ख़त लिखी चुकी आहे। सूबे में पाणी खोट जो असर कराचीअ ते बि पवंदो। माज़ी में बि दहशतगर्दनि खे KMC में भर्ती कयो वियो, जिन जो कमु रुगो माण्हुनि खे मारण ऐं कब्ज़ा करणु हो। अमरीका ऐं ईरान विच में थियल मेज़ाइल हमलनि बाद आलमी मार्केट में हिकु भेरो ॿीहर तेल महांगो थियण लॻो। WTI जी फी बैरल अघ में $7 ताईं वाध, 94.32 डॉलर फी बैरल थी वियो। अमारती तेल बि $6 महांगो थी वियो। बरतानवी कचो तेल 97.36 डॉलर फी बैरल थी वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में घुट ऐं ऊसट बाद मिटीअ जी तूफ़ान बाद बरसाति। मौसम ख़ुशगवार बणियल। कश्मो, रुबावड़ो, रौती ऐं ठिकराटो में तेज़ तूफ़ान बाद ककर वसी पिया। गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलनि फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: डॉक्टर साहब लाइव कॉल जी तरफ फलदा सी त केर सा सा गडा है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। बाबा केर है किथा गा?
1: अली उदार मरीज को गा काजी मन गा
0: जी। बाबा
1: अस्सा हार मुंडी रात ता जन
0: तमा थी दा वजन।
1: हां
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है। मरियन में तो सर यो आम जाम असा डिठो है तो न जी दाढ़ी वट वारी हुंदी है ऐ वार वट वारा हुंदा है।
2: अमा बेहतर रंदो के वडे सा गद क्लिनिक ते अची पो पांजे इन वारन जे बारे में असा के दिखारे वणो त इलाज हुंदो तो असा कंदा सी।
0: ऐ सर सेहतमंद गिजा खाधा उनन में केडी शयो जरूरी है इंसान के सेहतमंद
2: सेहतमंद रखन जिला खाधा? अच्छा सेहतमंद रखन जिला खादन जी जरूरत काने का खाधा अवा न खाओ बुख से रहो तब सेहतमंद थी वा जी असा रमजान में रहा हूँ ठीक
0: है।
2: पर असल गाल चाहे असा के पांजी डाइट के मेंटेन करनो। डाइट मतलब के असन जो खाधो पीतो आहे डेली सुबह का वठी रात जो सुमन ताई असन जो खाधो पीतो उन्ने के सेट करनो। मिसाल तौर थियासी असन गोठ में चाहे बस चाह पीती सी आई हले वैसी खाली पेट चाह पीण तमाम घणो नुकसानदेह आहे। वजह चाहे तो चाह गरम मानो चवन चाह गरम को थदी असाई थदी बिल्कुल आए पर पियो तो गरम न थदी करे तो को गरम गरम जितनी गरम पींद ओतरो अवा मजो इन वात सड़े खाधे नाली सड़े मादे में वही मादो सड़े पो गैस ब्लोटिंग फाटुलेंस यह शूँ अवज मादे में मौजूद थी व्यन तो आस्ते आस्ते पेट से गरमाइश तो कियोसी 11-12 बजे मानी खाधेसी अस मानी हजम थी न छो उन में गैस मौजूद है चाह पीण से कर गैस थी वही इन उनके अलावा जो अस उन में कोशिश यह कहीं तैयारी या 1 बजे मानी खाधीसी वरी असा चाह पीती शाम जो वरी असा चाह पीती रात जो मानी खाधीसी वरी चाह बी तकलीफ शायद अस हलन फिरन कम कार न क्यों मानी खाने का पो बस करण का बाद में भी असि चाह जरूर थी है। इन जे करे अवां कोशिश कंदा कियो त जेडमल अवां जी मादे जी का तकलीफ थे त अवां आखिर में 2-3 ग्रा छडे दियोस। सुबह मानी खाधी मंझंद मानी खाधी शाम में मानी ना है खानी सिर्फ़ हल्की फुल्को फ्रूट पानी जूस वगैरह जो अवां के इस्तेमाल करणो है। इन से चाहे तो मादे के टाइम मिलंदो अवां दाल भी खाइंदा तो अवां दाल भी हजम थींदी ऐं अवां जिस्म में लगन शुरू कंदी पो अवां जिस्म में हाँ मुझे हाने सेहत बिल्कुल सही थे पई
0: जी। सर तमाम बेहतरीन। सर एक बियो सवाल भी आए सवाल तो काफ़ी घना है पर आहिस्ता आहिस्ता उन सवालन जी तरफ हलूँ था। सर बारन में मोबाइल जी वधंदड़ इस्तेमाल जा सेहत ते असर पवंदा है?

0: जी सर।
1: सवाल वरी रिपीट कंदा।
0: जी सर, सवाल रिपीट कंदासीं त बारन में जो मोबाइल जो वधन इस्तेमाल है। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मोबाइल
0: के हवाले सा उनन जी सेहत ते कुछ?
1: जी हां, सेहत ते असर पोंदो आ आय वद में वद नजर नज़र ते असर पवंदो आहे। छो त ॾिसो, मोबाइल में छुआऊं ज़रूरु हूंदियूं आहिनि, जेका अखियुनि में लॻे थी। अच्छा, छुआउनि जो चवणु बेवकूफ़ी आहे, इन करे मां ईअं चवां थो रेज़ या रोशनी। असल में मोबाइल ॿार छा कंदा आहिनि, सफ़ा वेझो करे ॾिसंदा आहिनि ऐं रोशनी यकदमि अखियुनि खे लॻंदी आहे, त जंहिंसां उन्हनि नंढड़ी उमिरि में ई चश्मो अचणु शुरू थी पवंदो आहे। इहा वॾे में वॾो नुक़सानु जेको आहे न, उहो मूंसां इहो आहे। असां डॉक्टर्स बि आहियूं न, असांजे मूं वटि क्लिनिक ते बि तव्हां केॾी महिल ॾिठा हूंदो, मोबाइल मुंहिंजो टेबल ते पियल आहे, गेदे में बि न रखंदो आहे, टेबल ते पियल आहे। कॉल आई रिसीव कयोसीं, न पियो आहे, न का इस्तेमालु, न कुझु आहे। पेशेंट हुजनि न हुजनि, मोबाइल मां तक़रीबन न इस्तेमालु कंदो आहियां। कॉल आई त रिसीव कयोसीं न। छा इहे वजह छा? मोबाइल खे वेझो करे ॾिसण खां अखियुनि ते असरु पए थो, अखियुनि जी नज़र ते असरु पए थो, त इहा मेन नुक़सानु जेको आहे उहो आहे। बाक़ी मोबाइल जेका शइ आहे न, हिकिड़ी मोबाइल टच मोबाइल जी, हुन जा ॿ रस्ता आहिनि। जीअं हुनखे तव्हां पंहिंजी भलाई लाइ इस्तेमालु कंदा हो त तव्हां चढ़ी वेंदव, न त जो ॿियो रस्तो आहे त हुनखे ग़लति इस्तेमालु अवां करे सघो था। त इहा आहे अवां जी ॿारनि ते तरबियत।

0: अवां जे उनके तरबियत सही दींदा हो तो वो मोबाइल जो सही इस्तेमाल कंदा। अच्छा मुझे चवण जो मतलब सही इस्तेमाल तो मन उन तालीम ला इस्तेमाल करी पढ़ाई ला इस्तेमाल अगे फ्यूचर में करो उन बारे में सीख के बारे में इस्तेमाल इंजीनियर या असंगू डॉक्टर ठहणो है तो उन हाँ का क्या ये सब शूँ इस्तेमाल कर सके तो बाकी मूँ वट पेशेंट आन कुछ नौजवान छोकरा बाकी बया जो समझी वो तो वो मोबाइल जो गलत इस्तेमाल भी कह गलत इस्तेमाल तो जी नंढड़े अल्फाज में ची क्या छो तो वह है तो इतलाम मोबाइल के जरिए थे थी तो वह गलत रस्त आ ये रस्त सही हाँ जो खी सन वह है तरबियत तरबियत सही होंगी तो सही रस्ते से वा समझणी होंगी तो यार मोबाइल में जी सवाल जवाब मिसाल तौर से जी का यूनिवर्सिटी वाले जी चव यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले का स्टूडेंट्स हूँ वो चैट जीपीटी में इस्तेमाल कर एप उनमें यह इस्तेमाल क्या लेक्चर्स या को अस प्रोजेक्ट ठहणो आ तो चैट जीपीटी थ्रू ईजी कर वो आसानी के कर उन सब शालूम वी सन था फोन पर कम कर प्रोजेक्ट वगैरह ठाईंदा सुनो इस्तेमाल है ना तो ये भी इस्तेमाल कर सको अस पढ़न पाया डॉक्टरी पढ़नो सब्जेक्ट से पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है एंट्री टेस्ट है तो उनमें कड़े कड़े सवाल जवाब थी सन था उसके चेयर जी पी हर शे बुधा सकें सही तरीके का इन इस्तेमाल किया मोबाइल ही है
1: तमाम सर बेहतरीन जान जहाँ असान सामने के मिली जिन में यकीन अस कुछ सीखो हों सर एक बो सवाल भी आए तो होम्योपैथिक इलाज है जी होम्योपैथिक डॉक्टर आयो होम्योपैथिक इलाज है वो बेन तरीकों से क्या मुख्तलिफ है
0: जी बिल्कुल होम्योपैथिक इलाज अच्छा होम्योपैथिक इलाज का अवे जो समझणो है तो अस चार पांच साल का छो चूँ होम्योपैथिक इलाज कराया तो इनके समझण के लिए अवे पे वनो पव रिवर्स तो उनमें चाहे तो होम्योपैथिक ही इलाज छो करूँ और होम्योपैथिक इलाज है सवाल जो मतलब तो होम्योपैथिक इजाद किथा थी इजाद कें कई इन के बारे में पे समझो जैसे अवे समझ पे तो होम्योपैथिक इलाज कें इजाद थो होम्योपैथिक इलाज थे अवा जो असो बानी हो डॉक्टर फ्रेडरिक क्रिस्टल सैमुअल हनीमैन यो अस नालो बानी जो उन्हें एक पार की छल छल चौदा खाल वह पटे उन कुटे वह इस्तेमाल कैसी उन जिसम में तकलीफू थन महसूस थन शुरू थी वही इतना होम्योपैथिक की इजाद शुरू थी वही तो आस्ते आस्ते रिसर्च कदे कदे हर बीमारी की दवाओं थे शुरू थी वही मतलब कुदरती दवा कुदरती तरीके से तैयार थल कुदरती जरिए से दवा वी उन खाम तुलसी हूँ अस खाम वश हूँ तो वह सब कुदरत जहाँ सब शूं में वी जी वण बूटी आ वह ही कुदरत की शूं उन ही दवा तैयार थी उन बीमारियों को इलाज थी पवन आ कुदरती तरीके से मतलब अस चुना कुदरती इलाज कुदरती तरीके से ही सब कुदरत जहा तरीकेकार इलाज वगैरह इनमें चलो दवाओं ठहन पी कुदरत तरीके से हाँ एक गाल समझ में अची वही तो होम्योपैथिक में दवाओं ठहन जहा तरीकेकार तकरीबन कुदरती दवाओं से कुदरती शन से कुदरती दवा ठहती ठही वही बाकी होम्योपैथिक ही छो इलाज कर उनकी वजह चाहे तो अस वे अल्फाज में चवंदा तो होम्योपैथिक की रिसर्च इंसान के मथा थल है जेका असा आम इंसान आयूँ असाजे मथा दवा खाधीसी जेका तकलीफ थे वह खबर पई उन तकलीफन के असा के बीमारी में के मुब्तला हो तो उनके दवा दिनीसी तो वो तैयार थी तो ही थो तो इंसान के मथा रिसर्च थल बो को तरीकेकार इलाज जान उनमें कदें भी इंसान के मथा रिसर्च कान का सिर्फ ए सिर्फ जानवर के मथा रिसर्च है यह मेन शे तो होम्योपैथिक इलाज कराने की असि एक कुदरती तरीके से दवाओं ठहन दिन कुदरती सोर्सन जिता दवाओं मिलंदन अस तैयार क्या इनकी रिसर्च है वह भी इंसान के मथा कें जानवर के मथा रिसर्च कान्ने का तो इंसान ही बुधा सन था तो दवा खाधी मुख्य इं तकलीफू थी व्यू हुई हाँ पेशेंट जो इन इन तकलीफन के मुताबिक उनके इं दवा अच्छा इनमें एक वर्ड जो एड कर जैसे समझानी अची पे तो जी मेल अस दवा रिसर्च कंदा या इस्तेमाल कंदा अस तो उनमें अस दवा जो वा तेज़ दवा मतलब फुल पावर तकरीबन ये समझो 10 लाख पावर होंगी है उन दवा जो ताकत वह इस्तेमाल कंदा सजो दी नोट कंदा त क्या तकलीफ दवा खाधी मुख्य मथे में सूर थो पेट में सूर थो पेट में ही थो जोड़न में थी सब शूँ अस पा नोट कंदा असो जो दवा इस्तेमाल कह

0: बाबो हिकड़ो माण्हू न हूंदो आहे, हिकिड़ो इंसानु न हूंदो आहे, हुन में उमिरि जे हिसाब खां अलॻि ऐं औरत मर्द अलॻि थींदा आहिनि, माना औरत बि हूंदी मर्द बि हूंदो, मतिलबु हर कैटेगरीअ में हिकिड़ो हिकिड़ो पर्सन हुन में हूंदो। हिन में सिर्फ़ु इहो न आहे त मर्द आहे, औरत आहे, नंढो आहे, बुज़ुर्ग आहे, न रंग बि आहे, अछो रंग, कारो रंग ऐं हिन खे अलावा सन्हो थुलो माण्हू, इहे सभु शयूं जे मिलाए करे असांजी टीम ठहंदी आहे। तक़रीबन हुन में 100-150 माण्हू हूंदा आहिनि ऐं 100-150 माण्हू हिकिड़ी ही मेडिसन इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं हुननि जी जेमहिल आख़िरी में रिज़ल्ट ईंदो आहे त पोइ रिज़ल्ट खे वरी रिपीट कंदा आहिनि, वरी रिपीट कंदा आहिनि त सवाल जेका हुननि लिखिया आहिनि, जेका दवा जी अलामतूं लिखियूं आहिनि, उहा सभु सेम अचनि पियूं। त हा हाणे हीअ दवा मथे WHO जेको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन आहे पाकिस्तान में न दुनिया लेवल ते उनखे ॾिबी आहिनि, त हू इन जे मथां अञा रिसर्च कंदा आहिनि। त बाक़ी जेका दवा इस्तेमालु कई आहे, ठाही आहे ऐं उहो जेका निशानियूं चवनि पिया हिननि कैटेगरी में इन्हनि इन्हनि मरीज़नि खे इस्तेमालु थींदी, छा इहा सही आहे? उहा चवंदा आहिनि सही आहे। त पोइ ई असांजी मेटेरिया मेडिका असांजी किताबनि में ईंदी आहे ऐं असां डॉक्टर्स उनखे पढ़ी करे अव्हांजी दवाउनि जो इस्तेमालु कराईंदा आहियूं ऐं अव्हांखे सचियाबी तरफ़ वठी ईंदा। मुख़्तसर जी ॻाल्हि हुई त जेका अव्हांखे सम्झाइण जे लाइ त होम्योपैथिक दवा इंसाननि जे मथां रिसर्च थियल आहिनि, ठाहिण वारा बि इंसाननि को मशीनूं कोन्हनि खे, ऐं उन खां अलावा जेका दवा ठहंदी आहे कुदरती तरीक़ेकार सां, हुन में जेका जड़ी बूटियूं आहिनि सभु कुदरत जी तरफ़ां हूंदियूं आहिनि। छो त असांजी जेका डॉक्टर हुआ त जेको असांजी बानी हुओ हनीमैन, उन नंढी उमिरि में या वण में जंगलातनि में पहाड़नि में जबलनि में घुमंदा हुआ, छो त हुननि जो जेको बाबा हुओ उहा ग़रीब हुआ, इहो पाण बि ग़रीब इंसानु हो ऐं इन छा कंदा हुआ त पहिरीं चीनी वारा बर्तन तव्हां ॾिठा हूंदा उहा ठहंदा हूंदा त उनजे मथां, या जीअं असांजे घर में ठाहूं हूंदा आहिनि डिनर सेट हूंदा आहिनि उनजे मथां डिज़ाइनूं ठहियलु हूंदियूं हुयूं, डिनर सेटनि में प्लेटनि में तव्हां ॾिठो हूंदो न डिज़ाइन ठहंदी आहिनि, कंहिंमें गुल वग़ैरह ठहियलु हूंदा, हर शइ जी तयार हूंदा। त इन्हनि जा बाबा छा कंदा, चीनी वारा बर्तन हूंदे चीनी जा बर्तन चवंदा, त उनजे मथां इहे गुल वठी उहे पहाड़नि में वेंदा, हुननि खे ख़बर त अॼु 31 तारीख़ आहे मई जी, त 31 तारीख़ ते फलाणे जब पासे वेंदुसि, हुते नओं गुल निकिरंदो मौसम जी तब्दीली जे करे, उहा गुल तां पटे खणी ईंदा बाबे खे ॾींदा, त हू उन गुल खे ॾिसी उनजो डिज़ाइन ठाहींदा हुआ, जीअं की ख़ूबसूरती जे हवाले सां त ठान जे मथां इहा ख़ूबसूरती थिए ऐं इहा खपनि त असांजे रोज़गार हले। त नंढी उमिरि खां ई इन्हनि गुलनि जे बारे में वणनि जे बारे में ॼाण हुई, त आहिस्ते आहिस्ते जेमहिल इहा प्रोफेसर थी विया एलोपैथिक जा, होम्योपैथिक जा न एलोपैथिक जा प्रोफेसर थी विया, पोइ हुननि इहो सोचियो त यार हीअ जेको असांजो इलाज कयूं पिया इन में रतु कढूं पिया, पहिरीं बार अची असां वटि रोइनि पिया, असां हुननि खे सुयूं लॻाए रतु कढी अञा रोआयूं पिया, त इहो तरीक़ेकार इलाजु बहितरु कोन्हे को, अहिड़ो तरीक़ेकार इलाजु हुजे जे पेशंट रोईंदो अचे ऐं खिलंदो वञे। त उन्हनि इन्हनि शयुनि खे ॾिसी करे इन होम्योपैथिक जी ईजाद शुरू कई, ऐं जेको अलहमदिल्ला अॼु पूरे पाकिस्तान ते न पूरी दुनिया में कामयाबु इलाजु कनि पिया हर होम्योपैथिक डॉक्टर। अव्हांखे बि चवंदुसि त होम्योपैथिक जी तरफ़ ज़रूरु अचो, छो त इन में बहितरीन दवाऊं आहिनि ऐं हर मर्ज़ जी हर अलॻि अलॻि दवाऊं आहिनि, छो त रिसर्च जे मुताबिक़ जे मिसाल तौर ते ॿ माण्हू आहिनि, हिकिड़ो कारो आहे हिकिड़ो अछो, न नंढो आहे वॾो, न पोड़ो आहे जवान, न नंढो ॿार आहे औरत, न असांजी होम्योपैथिक चवंदी आहे त पेशंट असां वटि ॿ वेठा आहिनि, हिकिड़े खे ॿिन्हिनि खे माइदे में सूरु आहे, हिकिड़े खे सूरु आहे त मानी खाए त पोइ सूरु थिए थो, हिकिड़े चए थो मानी न खायां त बि सूरु आहे, त ॿिन्हिनि जी दवाऊं अलॻि आहिनि। ॿियो जेका का बि दवा हुजनि हिकमत हुजनि या एलोपैथिक वारा हुजनि उन्हनि वटि ईअं कान्हे का, उन्हनि वटि छा आहे त ॿिन्हिनि जे लाइ ओमीप्राज़ोल इसोमीप्राज़ोल या रूलिंग या नाइक्रेम या छा चवंदा आहिनि या राइज़िक वग़ैरह इहा शयूं आहिनि बसि, असां में हुनजे लाइ अलॻि दवा आहे उनजे लाइ अलॻि दवा आहे, त हीअ दवा खाईंदो हीअ ठीकु थींदो, हू दवा खाईंदो हू ठीकु थींदो, त हीअ रिसर्च आहिनि, महिनत आहे, इन जे सां इहा सभु दवाऊं ईजाद थींदियूं आहिनि, कोशिशि आहे उन्हनि जे करे इहे सभु शयूं पैदा थियूं, ख़बर पियूं ऐं माण्हुनि खे सही बीमारी में जेका बीमारी आहे उनजी सही दवा मिली त पेशंट तयारु थींदा ऐं हर शइ पंहिंजो कमु किरदारु कनि पिया।
1: सर तमामु बहितरीन सवाल ऐं तमामु बहितरीन सवाल मुंहिंजो, तमामु बहितरीन जवाबु तव्हांजो। सर कुझु ॿिया बि सवाल आहिनि।
0: जी जी, जेतिरा मर्ज़ी सवाल पुछो मां वेठो आहियां।
1: सर सुबुह जो नाश्तो न करण जा कुझु साइड इफेक्ट हूंदा आहिनि?
0: करण साइड इफेक्ट न बाबा,
1: नुक़सान वग़ैरह थियनि था?
0: नुक़सान नाश्तो न करण, साईं नाश्तो न कयो ऐं तव्हां सुता पिया हुजो पोइ नुक़सानु कोन्हे को, नाश्तो न कंदा हो ऐं सुता पिया आहियो त नुक़सानु कोन्हे, नाश्तो नथा कयो कमु कार कयो पिया नुक़सानु आहे, हाणे तव्हांजी मर्ज़ी कयो न कयो।
1: अच्छा सर, को अड़ो इंसान है आम मानो है जको चाहे तो मां सजी उम्र सेहतमंद रहा तो वो केड़ा उपाय वठे
0: अच्छा सजी उम्र सेहतमंद रहा का बीमारी न थे तो वो सभी का पहली बेहतर रहे तो पांजे जिस्म जी जनरल टेस्टू कराए जनरल टेस्ट मुराद पांजी माजे जी जिगर जी गुर्दन जी अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट वगैरह सब शुरू कराए उनमें दिसे तो कें शे में कमी आ उन्हें जो ट्रीटमेंट कराए इलाज कराए बाकी पांजी रूटीन रूटीन पाई सही करे खाधो पीतो पाँच सही इस्तेमाल करे टाइम से इस्तेमाल करे उनका अलावा एक्सरसाइज जरूर करे सोच गणती परेशानी न करे निंड आराम पाँच पूरी रखे वो अम्बिशन न मरीज ही न है वो तो बिल्कुल तैयार है बिल्कुल सेहतमंद है ना उनके शुगर थी ना ब्लड प्रेशर ना उनके फालिश थी ना उनकी टीबी थी ना दिल जहा मसला थन्दा न माजे जहाँ न जिगर जहाँ पाँची लाइफ के सही नमूने से गुजारा जी तुम पा एक शे नोट कई अवां पाण ॾिठो अंग्रेज दवाऊं घटि खाईंदा आहिनि
1: बिल्कुलु सर बिल्कुलु
0: असांजा पाकिस्तान वारा घणी दवाऊं खाईंदा आहिनि उन जी वजह छा आहे त हू पंहिंजी रुटीन ठाहे वेंदा आहिनि एक्सरसाइज़ बि कंदा आहिनि कमकार बि कंदा आहिनि खाधो पीतो बिल्कुलु मतिलबु की पंहिंजी जान जे लाइ खाईंदा आहिनि त सुठो नमूने सां खाईंदा आहिनि सुठी शयूं खाईंदा आहिनि साफ़ु सफ़ाई तमामु बहितरीन हूंदी आहे हर शइ में हुनजी साफ़ु सफ़ाई बहितरीन हूंदी आहे त हू पंहिंजी लाइफ खे सही कंदा असां वारा छा आहिनि बाबा हल रोड ते पेटिस कया आहिनि बिस्मिल्ला बाबा तूं खाराई पियो न हा हा ॿ टे ॿिया घुरा मां उहो खायां त ईअं इन करे त असांजा सिंध वारा पाकिस्तान वारा दवाऊं घणी खाईंदा आहिनि ॿाहिरि वारा घटि खाईंदा आहिनि छो त दवाऊं घणी खाइण बि नुक़सानु आहे इहा शइ ॿुधाइणी हुजे
1: अच्छा सर इन ॻाल्हि खे अव्हां जे हिन सवाल खे नोट करे मां हिकु वरी सवाल तव्हां खां पुछां थो त हर बीमारी जे लाइ दवा ज़रूरी आहे
0: जी हर बीमारी जे लाइ दवा ज़रूरी अच्छा हिन में जीअं कुझु कुझु बीमारियूं हींअर मुंहिंजे ज़हन में आहिनि त उहो मां ॿुधाईंदो हलां त बाक़ी कुझु आहिनि से जेका हींअर ज़हन में न आहिनि त ख़ासि करे ज़ुकाम हा ज़ुकाम ज़ुकाम अव्हांखे आहे हिकिड़ो ॾींहुं थी वियो आहे ॿ ॾींहं थी वियो आहे ज़ुकाम अव्हां उनखे दवा न वठो हलणु ॾियो ऐं उन खां अलावा हाक जो उल्टी हिकिड़ो दफ़ा थिए पई न बंदि कयो मोशन आहे दस्त आहे उहा हिकिड़ो ॾींहुं हले पिया ॿ ॾींहं हलनि पिया बंदि न कयो वजह छा आहे त जिस्म मां जरस जेका दस्तनि जिस्म में थियण जी वजह छा थींदी आहे त मैदे में जिस्म में गर्माइश जो थी वञनि उन जे करे दस्त थी वेंदा आहिनि त उहा बहितरु आहे निकिरी वई सभु शयूं ठीकु आहे उन खां अलावा ज़ुकाम आहे त मग़ज़ में गाढ़ो न जमा थी वञे ऐं तव्हांखे ज़ुकाम थिए पियो हिकिड़ो ॿ ॾींहं थियणु ॾियो सॼो शयूं निकिरी वेंदियूं ऐं उन खां अलावा ॿिया बि तकलीफ़ूं आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं त इलाजु अवां न करायो त पर उन में एहतियात इहे कयो त हिकिड़ो ॿ ॾींहं ॾिसो पोइ वरी अव्हांखे इलाज कराइणो आहे इहा शइ ज़हन में हुजे लाज़मी न त ॿ ॾींहं खां पोइ अव्हां इलाज न करायो ज़रूरत पए इलाजु ज़रूरु करायो
1: अच्छा सर कुझु सवाल रहिजनि था अञा जेके अव्हांखे ॿुधाईंदसि बि सही थी पंहिंजे केरियर दौरान सर तव्हांजे तकरीबन तव्हांखे 14-15 साल जो तजुर्बो आहे
0: जी बिल्कुलु
1: सर इन में अव्हांखे को अहिड़ो मरीज़ यादि आयो हुजे जंहिंजी तव्हांखे कहाणी अॼु बि यादि हुजे
0: हा
1: होल केरियर तव्हांजो सॼे केरियर में हिकिड़ो अहिड़ो मरीज़ यादि हूंदो तव्हांखे
0: हिकिड़ो ई पेशंट हा हिकिड़ो पेशंट मूंखे यादि आहे ऐं हिकिड़ो पेशंट मुंहिंजी पुराणी क्लिनिक ते हिकिड़ो पेशंट मुंहिंजी हिन एफ एम वारी क्लिनिक ते ॿ पेशंट हुआ
1: ऐं
0: जेको एफ पुराणे क्लिनिक ते पेशंट हुओ त मूं वटि पेशंट आयो हुओ सहीदाबाद मां ऐं पेशंट मूं वटि पहुतो हुओ हुनखे बिल्कुलु शिवरिंग हुई सुतो पियो मां आयोमांसि ॾिठोमांसि शिवरिंग हुई मां हुनखे चयोमांसि हीउ ॾिसो इहो केस मुंहिंजो कोन्हे को ऐं अव्हां देरि पिया कयो अव्हां मुंहिंजे इंतज़ार में छो वेठा आहियो साईं असां हींअर आयासीं पर तकलीफ़ ॾिसूं पिया त असां चयूं त छा कयूं मूं चयो बाबा साम्हूं ॿारनि वारो डॉक्टर आहे होॾां वञो पर हुनखे एतिरो वक़्तु न मिलियो त हू ॿारनि जे डॉक्टर वटि हले वञे उहो 7 साल जी छोकिरी हुई गुज़ारे वई मुंहिंजी क्लिनिक ते ॿियो पेशंट हुओ मुंहिंजी उन क्लिनिक ते एफ एम आर ते मज़ो उहो ॾाढो हुओ छो त मुंहिंजी आदत हुई खिल बुक करण जी त हू अमा हुई ज़रदारी कास्ट जा हुआ त अमा आई मूंखां ई दवा वठंदी हुई ऐं हुनजी तकलीफ़ थी त आई बि मूं वटि दवा वठण जे लाइ घर में बि हुनजो फंक्शन हो शादी हो अलाए छा हो फंक्शन हो घर में दावत वग़ैरह हुई त हू चवंदो मां सुबुह वञा दवा वठी ऐं शाम जो भत आहे त इन करे मूं वटि आई हुई त मूं दम ॾाढो मां सां खिल भोग मुंहिंजी तमामु घणी खिल भोग थी दवा त मूं लिखी बाद में पर खिल भोग तमामु घणी हुई ऐं उन खां बाद मूंखे दुख इहो थियो त हींअर मुंहिंजी खिल भोग थी अम्मा वही लेडीज़ में जी जॻह हूंदी आहे उते वेठी हुई दरवाज़ो मुंहिंजो खुलियल हुओ मां ॾिसां पियो अम्मा वणी न पई यार अञा त खिले पई ॻाल्हाए पई हींअर छो माठि करे वेठी ऐं सिर्फ़ु एतिरी देरि थी अम्मा हुते बेंच ते लेटी ऐं कुर्सी छॾे ऐं वियो आहियां ॾिसण जे लाइ अमटी ऐं कुर्सी छॾे ऐं

कचहरी में असा सा गड हुआ सकण जा मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत जिन सेहत तंदुरुस्ती ऐं एहतियाती तदबीरुन बाबति तमामु क़ीमती ॻाल्हियूं असां सां वंडियूं। डॉक्टर साहब, अव्हांजी मुहबत, वक़्तु ऐं काराइते ॼाण जे लाइ दिलि जी गहराइयुनि सां महिरबानी। उमेद आहे त अॼु जी हिन कचहरी मां असांजा ॿुधंदड़ ज़रूरु फ़ाइदो हासिलु कंदा। सिहत अलाह पाक जी वॾी नेमत आहे, तंहिं करे पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, मुतवाज़न ग़िज़ा खाओ, ख़ुशि रहो ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशियूं विरिहायो। हाणे इजाज़त ॾियो, मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान नादर अली मक्सी ऐं अव्हां ॿुधी त रहिया आहियो जीअं सकर नवाब शाह FM 90.8। खिलंदा रहो, मुरकंदा रहो। अलाह पाक अव्हां सभिनी खे सिहत, ख़ुशहाली ऐं सुकून अता फ़रमाए। अलाह हाफ़िज़। सिंध सलामत, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

अमरीका ऐं ईरान विच में थियल मिज़ाइल हमलनि बाद आलमी मार्केट में हिकु भेरो ॿीहर तेल महांगो थियण लॻो। डब्ल्यू टी आई जी फी बैरल अघ में $7 ताईं बाद 94.2 डॉलर बाद फी बैरल थी वियो। इमाराती तेल बि $6 महांगो थी वियो। बरतानवी कचो तेल $97.6 फी बैरल थी वियो। वफद जे वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सां मुलाक़ात, बेतरफ़नि लाॻापन ऐं इलाक़ाई सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल। स्ट्रेटजिक डायलॉग में गॾियल सहकार खे हथी ॾियण वारे आज़म जो वर्चाउ। वज़ीर आज़म पारां खिते में जटादार अमन जी क़याम लाइ सफारतकारीअ ते ज़ोर भरियो वियो। परॾेही तर्जुमान चयो त मुलाक़ातुनि दौरान वापार, सीड़पकारी ऐं सिक्योरिटी सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। यूरोपी यूनियन ऐं पाकिस्तान हिक ॿिए सां सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजेट तयार थी वई। 12 जून ते सिंध असेंबली में पेश थियण जो इम्कान। नए माली साल में गुज़िरियल माली साल वारी तरक़ियाती बजेट रखण जी तजवीज़। सूबाई ADP बजेट 520 अरब ऐं ज़िले तरक़ियाती बजेट 55 अरब रुपया रखण जी बि तजवीज़ तयार। स्कूल एजुकेशन खाते जी तरक़ियाती बजेट 17 अरब 82 करोड़ ऐं कॉलेज एजुकेशन खाते जी 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज खाते लाइ 2 अरब 64 करोड़ ऐं मकानी खाते लाइ 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ तयार। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जी 24 अरब 68 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजेट रखण जी बि तजवीज़ तयार कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां मुल्की चेंबर्स जे नुमाइंदनि जी मुलाक़ात। वापारियुनि पारां शहबाज़ शरीफ खे नए माली साल जी बजेट बाबति तजवीज़ूं पेश कयूं वयूं। वज़ीर आज़म पारां वापारियुनि खे नए माली साल जी बजेट में तजवीज़ुनि खे शामिल करण जी ख़ातिरी कराई वई।

वफाक जी नए माली साल जी बजट में भी सिंध जी नजरअंदाज थियण जो इंकशाफ बेन सूबन जी भेट में सिंध जे रोटन लाए घट में घट पैसा रखा वया एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इजलास सिंध जे नुमाइंदे जो सख्त एहतजाज जरियन मूजिब रानीपुर मोरो रोड जी तामीर लाए 47 अरब रुपए मां रुगो 5 अरब रुपया रखा वया सखर रानीपुर टंडो आदम टंडो अलिया रोड लाए भी रुगो 3 अरब रुपया रखा वया सूबाई वजीर जाम खान शोरो चयो त लॻे थो त सिंध में बोर्ड लॻाए रोड बंदि करणा पवंदा वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो त नवां मनसूबा शुरू करण लाइ फंड न आहिनि सूबा अमीर थी विया आहिनि ऐं वफ़ाक़ वटि फंड न आहिनि सूबाई तरक़ियाती कम लाइ NFC मां ख़र्च कनि वफ़ाक़ी बजट ते बॉन्ड ॾियण लाइ अॻूणे गवर्नर कामरान टिसोरी जी बहाली जो शर्त रखी छॾियो MQM अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त कामरान टिसोरी जी बहाली संदन रेड लाइन आहे वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ दिलि वॾो करे कामरान टिसोरी खे ॿीहर सिंध जे गवर्नर तौरु बहाल करे MQM मुर्दा सियासत खे जीआरण जी नाकाम कोशिश करे रही आहे गैस जी बि ज़िमेवारी वफ़ाक़ी हुकूमत जी आहे के बि सिंध न पर वफ़ाक जी मातहत आहे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत पाणी बोहरान बाबति इरसा खे ख़त लिखी चुकी सूबे में पाणी खोट जो असर कराचीअ ते बि पवंदो आहे माज़ी में दहशतगर्दनि खे MC में भर्ती कयो वियो जिन जो कमु रुगो माण्हुनि खे मारणु ऐं कब्ज़ा करणु हो

0: सिंध में बदमनी जी बाह वधीक ॾह इंसानी जानियूं गड़काए वई। लाड़काणे भरिसां औरत ॿिन पुटनि ऐं धीअ समेत क़तल। मियां साहब भरिसां कार ऐं तकरार ॿिन ॼणनि जूं हयातियूं गड़काए वियो। घोटकी वेझो बि ॻोठाणो गोलियुनि जो खाज बणिजी वियो। लाड़काणे जे माहूटा थाणे जे हद में मुगेरी बिरादरी जे ॿिन धुरनि में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो। औरत ज़रीना ख़ातून, संदसि पुट ज़मीर रोशन ऐं धीअ साइमा मुगेरी क़तल। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस मूजिबि मक़तूल धुर ते बिरादरी जे हिकु ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो। लाड़काणे में ई अलाहाबाद थाणे जे हद में बसंत जो परणो कंदड़ जोड़ो क़तल। हथियारबंद औरत फिरदोस ऐं संदसि मुड़ुसु जावेद कोरकाणी खे क़तल करे फरार थी विया। मियां साहब भरिसां बखराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में कार ऐं तकरार सां छेड़ो, ॿ ॼणा क़तल, औरत ज़ख़्मी। मक़तूलनि में अब्दुल जब्बार ऐं आगा असदुल्ला बखराणी शामिल। औरत मालवी ज़ख़्मी थी पई। घोटकी भरिसां ॻोठाणो नादर सुंदराणी बि हथियारबंदनि हथां क़तल थी वियो। मक़तूल जे वारसनि जो घोटा धुर ते ॻोठाणे खे मारण जो इल्ज़ाम। कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस पारां कुझु माण्हुनि खे हिरासत में वठण जी दावा।
1: अठावी तरमीम ने सिंध के तकसीम करने की अदालत जयू आ कें भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार ना है। मुल्क की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए, मुल्क के मजबूत करने के लिए, आवाम के मजबूत करने के लिए जयू आ जरूर गौर कभी। लेकिन अजा तीन जो मसलो हथ में ना आया उन तबसो कर कबल वक्त हों, लेकिन तकसीम कें भी सूरत में जयू आ बर्दाश्त।
0: अठावीहीं तरमीम में सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं। मुल्क ऐं अवाम खे मज़बूत करण लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो। सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। जेयू आई अॻवान मौलाना राशिद महमूद सूमरो चयो आहे त सिंध में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। जेसिताईं रियासत जी रिट क़ाइमु न थींदी, अमुन बहाल न थींदो।

भोटकी वेझो लजालट जो शिकार थियल नारी हूरा चाचड़ 164 जी बयान लाइ अदालत में पेश। अदालत बुधणी 4 जून ते मुलतवी कंदे जवाबदारनि खे साॻे ॾींहं ते पेश थियण जे लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। केस में नामज़द हिकु जवाबदार निसार चाचड़ गिरफ़्तार थियल, मुश्ताक चाचड़ समेत 3 जवाबदार हिफ़ाज़ती ज़मानत ते आहिनि।

भारतीय जे डिफेंस ते 8 वारे इलाके मां पंजाब जे जिले रहीम यार खान जे डीपीओ इरफान समो जे घर मां धाड़ो जवाबदार इरफान समो जे घर बातन के यरगमाल बनाए फुल लुट करण बाद फरार थी विया। एसएसपी साउथ मूजिब चार हथियारबंदन इरफान समो जे घर में दाखिल थी घर बातन के यरगमाल बनाए फुल लुट कई। वधिक जांच जारी है।

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
1: GFM 90.8
2: तंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लेबनान ते इसराइली हमलन बाद ईरान अमरीका सामान गालियों रोके छड़ियों। नेतन्याहू जी बेरूत ते हमलन जी धमकी बाद ईरानी फौज भी उत्तर इसराइल के शहरों के इलाका खाली करने की वार्निंग दे छड़ी। पासदारान इनकलाब चया है तो बेरूत ते हमला थिया तो इसराइली नुकसान का बचने लाए उतरिया इलाका खाली कर हलया वन। ईरानी मीडिया मूजिब इसराइल जहाँ लबनान ते हमला जारी रहा तो अमरीका इसराइल विच में जारी जंगबंदी खत्म थी सके थी। फिलहाल अमरीका से अमन गाल पैगाम के रोको वो है। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास राक्षी से फोन से राबतो। लबनान समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल से तफसीली गाल इसहाक डार पारा खिते में अमन की क्याम ए जंग के खात्मे ला गाल जारी रखने से जोर भर वो। ईरानी परदेही वजीर कतरी हमन सब से भी मौजूदा सूरत हाल से गालबोल की है।